0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आज शक संवत 1948 के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। तदनुसार 26 जुलाई 2026, आज दिन रविवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: एक राजा बहुत ही कड़वा बोलता था। हर व्यक्ति को गाली देना, ताने कसना और हर व्यक्ति को धमकी देना। अब राजा के आगे बोले कौन? एक दिन राजा अपने दरबारियों से बोले, जो जो आदमी जिस वस्तु को सबसे अधिक बुरा समझता हो उसे मेरे पास लाओ। दूसरे दिन कोई व्यक्ति कीचड़ ले आया तो कोई सड़ा गला पदार्थ। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक मृत पुरुष की जीभ काट कर ले गया। राजा ने उस जीभ को देखकर पूछा, इसमें क्या बुराई है? तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, बुराइयों की जड़ तो यही है, तलवार के कांटे का इलाज है, परंतु कड़वी बात से हृदय पर जो घाव हो जाता है उसका कोई उपचार नहीं, और यह जीभ ही है जो कड़वी बात बोलती है। राजा को स्वयं से कुछ लज्जा अनुभव हुई कि सबसे कड़वा तो मैं ही बोलता हूँ, परंतु वह चुप रहा। दूसरे दिन उसने दरबारियों को कहा, जिस जिसको जो वस्तु सबसे अधिक अच्छी लगती है उसको मेरे पास ले आओ। दूसरे दिन कोई व्यक्ति घी ले आया, कोई चीनी, कोई शहद और कोई फूल ले आया, परंतु वही बुद्धिमान व्यक्ति आज फिर से एक मृतक की जीभ काट कर ले आया। राजा ने कहा, अरे तू तो कहता था कि जीभ से अधिक बुरी कोई वस्तु नहीं, आज तुझे सबसे अधिक अच्छी वस्तु लाने के लिए कहा तो तू फिर से जीभ ही ले आया। उस आदमी ने कहा, महाराज, जीभ सबसे अधिक बुरी वस्तु भी है और सबसे अधिक अच्छी वस्तु भी। जब ये मीठा बोलती है, सम्मान से, आदर से, प्यार से बोलती है, जब ये भगवान का नाम लेती है तो इससे अधिक अच्छी वस्तु दूसरी नहीं होती। वास्तव में जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक होती है, किंतु जीभ से लगी चोट जिंदगी भर ठीक नहीं होती। संत रहीम की गहरी बात स्मरण होती है, रहिमन जिवहा बाबरी, कह गई सर्ग पाताल, आप तो कह भीतर भई जूता खात कपाल।
1: जीवन सौरभ।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आजाद हिंद सेना की सिपाही नीरा आर्य के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें आज का विषय होगा भाषा की मर्यादा। सुबह 9 बजे विशेष कार्यक्रम करगिल विजय दिवस। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा सर्जिकल स्ट्राइक। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। सुबह 10 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। आज की कड़ी में हम सुनेंगे क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम। और सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। सुबह 11:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन के अंतर्गत आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 173 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रावरुणी, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप, विराट स्थाना अथवा विषम पदा।
4: समत्सुत्वा शूर सतामुराणम प्रपथिन्तमं परितं सयध्येयि सजोषस इन्द्रं मदेक्षोणीहि सूरि चिन्द्ये अनुमदन्ति वाजैहि। जो उत्साही वीरगण आनंदित स्थिति में अन्नों के द्वारा ज्ञान संपन्न इंद्रदेव को मरुतों के साथ प्रसन्न करते हैं, हे वीर इंद्रदेव, वे सर्वोत्तम श्रेष्ठ मार्गदर्शक मानकर आपको ही युद्ध भूमि में भी अग्रणी स्थान प्रदान करते हैं। एवा हि तेषं सवना समुद्र आपो यत्त आसु मदन्ति देवीहि विश्वाते अनु जोष्या भूद्गैः सूरींश्चिद्यदि धिषावेशी जनान। जब जलों को समुद्र तथा समस्त भूक्षेत्रों में बरसाने के लिए इंद्रदेव की स्तुति की जाती है, तब जल वृष्टि की कामना से किए जा रहे यज्ञ आनंदप्रद होते हैं। जब ज्ञानी मनुष्य भावना पूर्वक इंद्रदेव की प्रार्थना करते हैं, तब हर्षित इंद्रदेव उन्हें अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। असाम यथा सुशखाय एन स्वभिष्टयो नराम न शंसैहि असद्यथा न इंद्रो वंदनेष्ठास्तुरो न कर्म नयमान उक्था। हे स्वामी इंद्रदेव, आप हमारे साथ वही व्यवहार करें जिससे हमारी मित्रता आपके साथ रहे और हमारी स्तोत्रवाणियां आपसे अभीष्ट साधनों की पूर्ति भी करा सकें। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर शीघ्र ही हमें कर्तव्यों का निर्वाह करने की शक्ति प्रदान करें। विश्पर्धसो नराम न शंसै रस्मा कास दिन्द्रो वज्रहस्तः मित्रायुवो न पूर्पतिम सुशिष्टौ मध्यायुव उप शिक्षन्ति यज्ञैहि। याज्ञिकों के समान ही स्तोता लोग भी प्रशंसक वाणियों के द्वारा प्रतिस्पर्धा भावना से इंद्रदेव की स्तुति करते हैं, ताकि वज्रधारी इंद्रदेव की मित्रता हमें प्राप्त हो। जैसे मध्यस्थ लोग शिष्टाचारवश मित्रता की कामना से कुछ उपहार देते हैं, वैसे ही राष्ट्र रक्षक इंद्रदेव को यज्ञों के द्वारा दान स्वरूप हविष्यान्न समर्पित करते हैं। यज्ञों हिष्मेन्द्रम कश्चिद्रिन् धंजुहुराणश्चिन् मनसा परियन् तीर्थे नाच्छा तात्रिषाणमोको दीर्घो न सिद्ध्रमा कृणोत्यध्वा। प्रत्येक यज्ञीय कर्म इंद्रदेव को संवर्धित करते हैं, दुर्भावजन्य कुटिलता से किए गए यज्ञ से इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होते हैं। जिस प्रकार तीर्थ यात्रा में प्यासे को समीप का जल ही तुष्टि देता है, दूर दिखने वाला जल तृप्त नहीं करता, उसी प्रकार श्रेष्ठ यज्ञ ही इंद्रदेव को प्रसन्नता प्रदान करता है। जैसे लंबा पथ पीड़ा पहुंचाता है, वैसे ही कुटिलता पूर्ण यज्ञ कुटिल फल प्रदान करता है। मोषूण इंद्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हिष्मा ते सुष्मिन्नवयाः महिश्चिद्यस्य मीडहुषे यव्या हविष्मतो मरुतो वंदते गीहि। हे इंद्रदेव, आप मरुतों के साथ युद्ध में हमारा भी साथ मत छोड़ना। हे बलशाली, आपके लिए यज्ञ भाग प्रस्तुत है, हमारी सुख देने वाली फलित होने वाली स्तुतियां अन्न और जल देने वाले मरुतों की भी वंदना करती हैं। एषस्तोम इंद्र तुभ्यमस्मे एतेन गातुम हरिवो विदो नह आनो ववृत्याह सुविताय देव विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। हे अश्वों से संपन्न देवस्वरूप इंद्रदेव, हमारी ये स्तुतियां आपके निमित्त हैं, इनसे हमारे यज्ञ के उद्देश्य को समझें, हमें कल्याणकारी धन संपदा प्रदान करें, जिससे हम अन्न बल तथा विजयश्री प्रदान करने वाले सैनिकों को प्राप्त करें।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 173 से वाचन।
0: अभी आप सुन रहे थे वैदिक ऋचाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद।
3: प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
5: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। जीवन में अवसर तो आएंगे ही, अंतहीन अवसर पूरे जीवन मिलते रहेंगे। आलस ना करें, वरना अच्छे अवसर हाथ से निकल जाएंगे। ऐसा समय जिसमें हमें महान बनना था, जो समय हमें ऊंचाइयां देने आया था, जिस समय हम जीवन की सही राह पकड़ने वाले थे, अगर वो समय आलस की वजह से हमारे हाथ से निकल गया है, तो अब सावधान हो जाएं और समय का आदर करना सीखें।

प्रेम, करुणा, त्याग, संयम, अनुराग और भक्ति जैसे गुण महापुरुषों के स्वभाव में रहते हैं। ये सभी सद्गुण हम सभी में हैं। इन गुणों को जगाना पड़ता है। अपने भीतर प्रेम, माधुर्य और संयम को जगाएं, अपने भीतर की सरलता को जगाएं। जब हम ऐसा ठान लेंगे कि हमारे सद्गुण चैतन्य हो, हमारी दिव्यताएं उजागर हो, हमारी श्रेष्ठताएं एक साथ जीवंत हो, तब निःसंदेह हम बड़े कार्य कर पाएंगे।

हम अपने काम के लिए कितने गंभीर हैं, कितने अच्छे संकल्प और श्रम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इन बातों से हमारी सफलता तय होती है। अगर हम स्वयं के प्रति गंभीर हैं, निष्ठावान हैं, हमारे विचार सही हैं, हम कोरी कल्पनाओं से काम नहीं चलाते, तब हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं।

शुभ कर्म ही मूल पूंजी है। शुभ कर्म का अर्थ है दूसरों के प्रति सेवा की भावना, दूसरों के दुर्गुणों और दोष पर ध्यान नहीं देना। जहाँ सद्गुण है, शुभता है और प्रियता है, वहाँ पर हमें रहना चाहिए। भाषा में सकारात्मक भाव लाना चाहिए। हम किसी के उस पक्ष को ना देखें जहाँ दुर्गुण हैं, हमेशा कुछ अच्छा देखने का प्रयास करें।

नवाचार करना हमारा एक स्वाभाविक गुण है। हम कभी भी नया सृजन, नई खोज और नए काम कर सकते हैं। मनुष्यों ने संचार, सूचना, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, आधुनिक उपकरण जैसे हर क्षेत्र में अब तक कई आविष्कार किए हैं, कई बड़ी बड़ी खोजें की हैं। ये सब मनुष्यों के सामर्थ्य की वजह से ही हो रहा है। हमें अपनी रचनाओं को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए।

हमारी वर्तमान स्थिति हमारी पुरानी कामनाओं और कर्मों का ही प्रतिफल है। हम आज जो कुछ भी है अपने संकल्प, कर्म और विचारों की वजह से ही है। हम जो कुछ अच्छा बुरा प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। जब हम वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अपने इंद्रियों पर संयम रखते हैं, तब हमारा भविष्य सुखद बनता है।

0: ये था हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण सुन रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है वतन का राग। इस कार्यक्रम में आज हम आजाद हिंद सेना की सिपाही नीरा आर्य के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास एक महागाथा है, जिसके पन्नों पर आज भी धड़क रही हैं अनगिनत बलिदान की कथाएं। मातृभूमि से प्रेम के, उस पर अपना सर्वस्व अर्पण करने के अनगिनत प्रसंग इसमें शामिल हैं। किसी ने घर परिवार छोड़ा, किसी ने पढ़ाई लिखाई और रोजगार, किसी ने कलम की ताकत दिखाई तो किसी ने हाथों में तलवार उठाई, किसी ने फांसी के फंदे को चूमा तो किसी ने इस आजादी के लिए अपना वतन छोड़ा। त्याग, समर्पण और बलिदान की एक ऐसी ही कहानी आज वतन का राग कार्यक्रम में। ये कहानी है नीरा आर्य की। वो आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी। जब उनके पति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने की कोशिश की तो उन्होंने अपने पति की ही हत्या कर दी। माना जाता है कि स्वाधीनता समर के दौरान वो भारत की पहली महिला जासूस थीं। वो महान देशभक्त, साहसी और अत्यंत स्वाभिमानी महिला थीं। उन्होंने अपना सब कुछ देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया और बदले में कभी कुछ नहीं चाहा। नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा नामक स्थान में हुआ था। जब वो मात्र 8 साल की थी, तभी महामारी के कारण उनकी माता लक्ष्मी देवी और पिता महावीर जी का निधन हो गया। छोटे भाई बसंत की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ गई। ऐसे समय में आर्य समाज का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें कलकत्ता से सेठ छज्जूमल आए हुए थे। उन्होंने नीरा और उनके छोटे भाई को गोद ले लिया और कलकत्ता चले आए। यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वो हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला के साथ साथ कई भाषाओं में प्रवीण थीं। नीरा आर्य का विवाह कलकत्ता के ही श्रीकांत जयरंजन दास के साथ संपन्न हुआ, जो अंग्रेज सरकार के गुप्तचर विभाग में अधिकारी थे। शादी के बाद नीरा आर्य को ये मालूम हुआ कि अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पकड़वाने में उनके पति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बात वो सह नहीं सकी, क्योंकि बचपन में ही वो सरदार भगत सिंह से मिल चुकी थीं, जो अंग्रेजों से बचने के लिए चौधरी छज्जूमल के घर पर रुके थे। पिता के आदर्शों के कारण उनके भीतर देश प्रेम की भावना बहुत गहरे तक समाई हुई थी। यही कारण है कि नीरा आर्य और उनके पति के बीच मतभेद हुए और उन्होंने ससुराल छोड़कर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली के शाहदरा में उन्होंने बच्चों को संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाना आरंभ किया। इसी बीच वो अपने गांव के मेले में आईं। यहीं उन्हें आजाद हिंद फौज में शामिल हुए अपने एक परिचित राम सिंह के विषय में मालूम हुआ। ये सुनते ही जैसे उनके जीवन को एक दिशा मिल गई। उन्होंने राम सिंह से सिंगापुर चलकर आजाद हिंद फौज में शामिल होने की बात कही।

इस तरह मीरा आर्य आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हो गईं। उनका भाई वसंत भी फौज में सिपाही हो गया। मीरा आर्य को रेजिमेंट की कमांडर डॉक्टर लक्ष्मी सहगल और सचिव मानवती आर्या के नेतृत्व में सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें अंग्रेजों की जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। गुप्तचर विभाग के प्रमुख पवित्र मोहन राय के आदेश पर मीरा आर्य ने अपनी सहयोगी सरस्वती राजामणि, जानकी, बेला और दुर्गा आदि के साथ ये दायित्व संभाला।

नीरा आर्य ने अपनी आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष में स्वयं लिखा है, हम लड़कियों ने लड़कों की वेशभूषा अपना ली और अंग्रेज अधिकारियों के घरों और मिलिट्री कैंप में काम करना शुरू किया। हमने आजाद हिंद फौज के लिए बहुत सी सूचनाएं इकट्ठी की। हमें साफ तौर पर बताया गया था कि पकड़े जाने पर हमें खुद को गोली मार लेनी है। इस तरह नीरा आर्य जैसे तलवार की धार पर चल रही थीं। इसी बीच जासूसी करते हुए उनकी सहयोगी दुर्गा पकड़ी गईं। नीरा आर्य और सरस्वती राजामणि ने उन्हें बंदी गृह से छुड़वाने के लिए किन्नरों की वेशभूषा धारण की। वो जेल के पास पहुंच गईं। कई अंग्रेज अधिकारी और सैनिक वहां मौजूद थे। दोनों ने नशीला पदार्थ खिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और दुर्गा को छुड़ा लिया। इसी बीच अचानक एक सैनिक को होश आ गया और उसने गोली चला दी। गोली सीधे जाकर सरस्वती राजामणि के पैर में लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो तीनों जंगल की तरफ भागीं और किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ गईं। नीचे सर्च ऑपरेशन चलता रहा। वो 3 दिन तक भूखे प्यासे पेड़ पर ही छुपी रहीं। 3 दिन बाद जब पुलिस हार कर लौट गई, तब वो आजाद हिंद फौज के बेस कैंप तक पहुंची। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस विषय में सुना तो उन्होंने तीनों की बहुत प्रशंसा की। इसके बाद नीरा आर्य को कैप्टन बनाया गया और इसके साथ ही नेताजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नीरा आर्य को दी गई। वो अत्यंत निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पालन में जुटी रहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए उनके मन में अपार श्रद्धा थी।

नीरा आर्य एक अत्यंत बहादुर और निष्ठावान सिपाही थी। एक रात वो कैंप में नेताजी की सुरक्षा में तैनात थी। तभी उन्हें किसी के पास होने का एहसास हुआ। उन्होंने तेज आवाज में चेतावनी दी। चेतावनी देते ही उन्होंने देखा कि उनके पति श्रीकांत जयरंजन दास हाथ में रिवॉल्वर लिए सामने खड़े हैं। उन्हें समझते देर न लगी कि नेताजी की जान को खतरा है। श्रीकांत जयरंजन दास ने पलक झपकते ही नेताजी पर गोली चला दी। निशाना चूका और गोली उनके ड्राइवर को जा लगी। नीरा आर्य ने बिजली की फुर्ती से श्रीकांत जयरंजन दास के पेट में संगीन घूंप कर उन्हें मार डाला। कर्तव्य पथ पर उन्होंने अपने सुहाग का बलिदान दे दिया। इस घटना से लोग अवाक रह गए। स्वाधीनता की बलिवेदी पर ये एक नारी का अद्भुत बलिदान था। इस बलिदान ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को जैसे झकझोर कर जगा दिया, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया।

0: पर गिरा दो।
1: इस घटना के बाद वो नीरा नागिन के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। नीरा आर्य ने आजाद हिंद फौज के लिए आगे भी जासूसी का काम बखूबी किया। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में बंदी सैनिकों पर मुकदमा चला, तब नीरा आर्य को काला पानी की सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने अपने पति यानी अंग्रेजी सरकार के एक सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या की थी। जेल में उन्हें घोर यातनाएं दी गईं। जेल पहुंचकर उनके मन में यही चिंता थी कि अब देश को आजादी कैसे मिलेगी, जेल में रहकर स्वाधीनता के लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। अंडमान में रहते हुए उन्हें जो सबसे बड़ा दुख था वो था अपनी मातृभूमि से दूर हो जाने का दुख। जेल में उन्हें प्रलोभन भी दिया गया। अपनी आत्मकथा में वो लिखती हैं, सूरज निकलते ही सुबह जेलर ने कड़क आवाज में मुझसे कहा, अगर तुम बता दो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां हैं, तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। वो तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, सारी दुनिया जानती है, मैंने जवाब दिया। जेलर ने चीखते हुए कहा, झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो कि वो हवाई दुर्घटना में मर गए, नेताजी जिंदा हैं। हां वो जिंदा हैं, मैंने कहा। तो कहां हैं, जवाब दो, जेलर चीखा। मेरे दिल में जिंदा हैं वो। जैसे ही मैंने ये कहा, जेलर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे। वो बताती हैं कि जेलर के इशारे पर लोहार ने असहनीय पीड़ा देते हुए लोहे के जंबूर से उनके स्तनों को काटने की कोशिश की। अपमान और दर्द से भरी ये घटना असहनीय थी। यातनाओं के ऐसे अनेक दौर जेल में जारी रहे। छोटी सी कोठरी में लोहे की जंजीरों से बांधकर वो रखी गई थीं। जब देश आजाद हुआ तब नीरा आर्य भी रिहा कर दी गईं। आजादी के बाद उन्होंने कोई सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। उनके भाई बसंत कुमार भी स्वाधीनता संग्राम में शामिल रहे और आजादी के बाद वो सन्यासी बन गए। नीरा आर्य ने अपने जीवन के अनुभवों को दो किताबों में लिखा, एक उनकी आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष और दूसरी किताब है अंडमान की अनोखी प्रथाएं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने फूल बेचकर गुजारा किया। वो हैदराबाद में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थीं। 26 जुलाई सन 1998 को निर्धन और असहाय स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेखक और पत्रकार तेजपाल सिंह धामा ने कुछ लोगों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। इस तरह एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की इस संसार से विदाई हुई। आज हम आजाद देश में रहते हैं, आजादी के तराने गुनगुनाते हैं, और तभी आजादी के इस आलोक में रह रहकर झिलमिला उठता है उनका चेहरा, जिन्होंने अपने जीवन का पल पल अपना सब कुछ देश हित में बलिदान कर दिया। उनका ऋण भला कैसे चुकाया जाएगा। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है भाषा की मर्यादा।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं बातों की बात की। आप सोच रहे होंगे ना ये कौन सी बात हुई, लेकिन यही बात है बच्चों कि हम बात कैसे करते हैं, बात करने का हमारा तरीका क्या है, बात करते करते कहीं हम ये तो नहीं भूल जाते कि हम इतना कैजुअल हो गए हैं कि किसी से कुछ भी बोले दे रहे हैं, क्या हम अपनी भाषा में बुरे शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या हमने अपनी बोली में पूरी मर्यादा रखी हुई है, या हम कुछ भी कहे जा रहे हैं। तो फिर अब हम आपको आज इसी बारे में बताने वाले हैं कि भाषा की मर्यादा क्या होती है ना। एक बहुत अच्छा दोहा है जो मुझे बड़ा पसंद भी है और वो दोहा है, रहमन जिहवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूत खात कपाल। है ना, कितनी बड़ी बात है। रहीम जी कहते हैं कि जीभ बड़ी पागल है, या ये कह लीजिए कि बावली है, जो बिना सोचे समझे स्वर्ग और पाताल तक की उल्टी सीधी बातें कह जाती है। और खास बात ये है कि ये जीभ तो बिना विचारे बोलकर तुरंत मुंह के अंदर छुपकर बैठ जाती है, लेकिन इसके द्वारा कहे गए जो कड़वे या गलत शब्द हैं उनके कारण मार किसको पड़ती है, हमारे सिर को। है ना, मतलब कहे कोई और भोगे कोई, कह रही है जीभ, भोग रहा है सिर, तो फिर तो गलत बात हो गई ना बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि ये जीभ जो है इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करिए। एक और बात है, जो आपके शब्दों के बाण होते हैं ना वो ज्यादा तेजी से घायल करते हैं किसी और चीज से, तो इसलिए हमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक और बात कहते हैं वो ये कि कही गई बात कभी वापस नहीं लौटती। मैं आपको इतनी सारी छोटी छोटी कहावतें, इतनी सारी बातें आज आपको बता दूंगी ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए कि हमें जब भी बात करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये बात करने के लिए मुझे कहाँ से दिमाग में आया, तो कहानी बड़ी सिंपल है। मैं आप जैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं खेल रहे होते हैं, कभी मंदिर के मैदान में, कभी कॉलोनी के पार्क में, कभी किसी के मोहल्ले में, अगर मैं जाती हूँ किसी से मिलने तो वहाँ जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत मिलती हूँ ये आपको पता है, तो बस जब मुझे ऐसे बच्चे दिख जाते हैं और वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे बाल सभा में आप लोगों से ये बात करनी है। तो हुआ ये कि मैं अपनी कॉलोनी के पार्क में बैठी हुई थी, दो बच्चे खेल रहे थे, हालांकि टीम उनकी बहुत बड़ी थी, 10-12 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दो बच्चों को मैंने देखा जो खेलते खेलते किसी बात पे झगड़ पड़े। तो ठीक है, बच्चों में झगड़ा होता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो झगड़े बहुत जल्दी से सुलझ भी जाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े भोले भाले भी होते हैं ना। आप सब आज लड़े कल दोस्ती, तो ये चीज़ बहुत अच्छी भी है। अब लेकिन क्या हुआ, उसमें से एक बच्चा बोला कि तुम पागल हो क्या, तो दूसरा बच्चा बोला कि तुमने मुझे पागल क्यों कहा। अब पहले बच्चे के पास कोई जवाब ही नहीं था कि पागल क्यों कहा, उसने कहा कह दिया तो कह दिया। वो बच्चा जिद पे अड़ गया, उसने खेलने से मना कर दिया ये कह के कि नहीं, ऐसे कैसे कह दिया तो कह दिया। मेरी माँ कहती हैं कि किसी को भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी जो गलत हो। मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे लड़ रहे हो, पर मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कही जो तुमको बुरी लगे, तुमने मुझे पागल क्यों कहा। और आप भी जानते हैं बच्चों कि कितनी बार हम इस शब्द का दिन भर में इस्तेमाल कर देते हैं, कभी स्कूल में, कभी लंच टाइम में, कभी शाम को बच्चों के साथ खेलते वक्त। अब आप सोचिए कि क्या ये कहना सही है, मतलब दोनों ही बच्चे हैं, वो बच्चा कह रहा है अरे कह दिया तो कह दिया, चल मैं तेरी दोस्ती हूँ, उसने कहा नहीं, पहले आप ये बोलो कि आज के बाद इस भाषा का, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, अब आप देखिए कि वो बच्चा अपनी जगह कितना सही है। वो न सिर्फ आपकी दोस्ती के लालच में वो किसी गलत बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है दोस्ती सारी चीजें खेलना सब साइड में है, पहले ये बताओ कि तुमने जो आज बात कही है वो कल कहोगे। वो कह रहा है अरे यार ये तो मुंह से निकल जाता है। अब देखिए दूसरी बात में ही क्या निकल गया, यार। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप में भाषा की मर्यादा नहीं है। फिर उस बच्चे ने टोक दिया कि देखो अभी तुमसे पागल कहने को रोका, अभी तुम बातों बातों में यार पे आ गए। तो बोला कि नहीं, बात अच्छे से करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी तुमसे दोस्ती हो जाऊंगा, मैं अभी तुमसे गले मिल लूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर अंत में बच्चों मुझे उस लड़ाई के बीच में पड़ना पड़ा। मैंने फिर दोनों बच्चों को समझाया, मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की दोस्ती हो जाओ। लेकिन वो बच्चा जो कह रहा है कि आज के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, तो नहीं करना। तो वो बच्चा जानते हैं मुझसे क्या बोला? वो बच्चा मुझसे बोला, आंटी मैंने कोई मारा थोड़ी है जो ये इतना नाराज हो रहा है। अब आप सोचिए कि भाषा की, बोली की मर्यादा उस बच्चे के लिए मायने ही नहीं रखती जिसने ये कहा कि मैंने तुमको मारा थोड़ी है जो तुम इतना बुरा मान रहे हो। ये सब तो चलता है। नहीं चलता बच्चों, नहीं चलता, बल्कि मैं ये कहूंगी कि नहीं चलना चाहिए। मेरे संगत में जो जो बच्चे आते हैं, मैं हर एक को एक ही बात सिखाती हूँ कि सबसे पहले आपका इम्प्रेशन होता है आप खुद, उसके बाद जैसे ही आप अपने शब्दों से कुछ अच्छी बात बोलते हो आपका इम्प्रेशन दोगुना हो जाता है, और जैसे ही आपने कुछ खराब बात की आपका इम्प्रेशन आधा रह जाता है। समझ रहे हैं आप बात? अगर आपको एक प्रभावशाली बच्चा बनना है, चाहे वो क्लास हो, स्कूल हो, आपका कोई स्कूल का ग्राउंड हो या फिर कोई ऐसी प्रतियोगिता हो, अगर आप बात बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना बच्चों, तो आपका प्रभाव दोगुना हो जाएगा। तो बच्चा बोला कि आंटी आप इतनी देर से मुझे समझाए जा रही हैं, आप इसे क्यों नहीं समझा रही हैं? मैंने कहा बेटा समझा तो मैं उसको भी रही हूँ, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि तुम्हें दोबारा गलती नहीं करनी है। तो बस ना तुम ये गलती करोगे ना बात बिगड़ेगी, क्योंकि तुम अगर ये कह रहे हो कि मैंने मारा थोड़ी, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात मारना है, उसके पहले की कोई भी गलतियां तुम्हारे लिए गलतियां हैं ही नहीं, है ना। तब उसको समझ में आया कि शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। तब उसने कहा सॉरी, तब उसने उस बच्चे से भी सॉरी कहा और उन दोनों बच्चों की दोस्ती हो गई। तो चलिए भाई, हमारी तो बात यहाँ शुरू हो गई है कि हमने बच्चों को समझाया, बच्चे मान गए। लेकिन आज का ये जो विषय है, आपको पता है ना, ये आपकी किताब में भी बहुत बार आता होगा, है ना। बहुत सारी जब आप हिंदी की कहानियाँ पढ़ते हैं उसमें भी ये बात आती है। इनफैक्ट मैंने आपको एक बार तोते की कहानी सुनाई थी इसी बाल सभा में, वो भी इसी बात पर थी कि एक तोता राजा को बहुत प्रिय था, याद आ गई होगी आपको सुनते सुनते ना, और एक तोता राजा को बिल्कुल अप्रिय था। दोनों में अंतर ये था, दिखने में दोनों एक जैसे थे, पर दोनों तोते जो थे उनकी भाषा में बहुत अंतर था। एक बहुत मीठा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता था, और वहीं दूसरा बहुत गंदा, बहुत तेज, बहुत चिल्लाकर, बहुत चीखकर और बहुत एनोइंग था। तो अब आप सोचिए बच्चों कि ये सब चीज़ें कितना महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। हाँ, अभी मैं एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ आपको। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, और ये कविता आपको समझ में आएगी क्योंकि मुझे लगता है कि इसका छोटा छोटा सा जो अर्थ है वो हमारी बात को और बल देता है। तो कविता यहां से शुरू होती है कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बनी पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। इस बात का मतलब समझे आप कि भले ये शक्ति विज्ञान में है जिससे अमावस की रात भी पूर्णिमा जैसी बन जाती है, लेकिन विश्व पर आज क्यों दिन में ही अमावस जैसा अंधेरा छा जाता है। कितना बड़ा प्रश्न कर रहे हैं कवि। आगे लिखते हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। कितनी सुंदर बात है। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। अब अगर हम अपनी बात को इस बात से करेंगे तो ये मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन तिमिर का मतलब बच्चों अंधेरा होता है, और जो दीप स्नेह के दीप की बात जलाने की कर रहे हैं कवि, वो यही है कि भले ही हम साइंस ने विज्ञान ने जो बल्ब जला दिए हैं, जितना आविष्कार हुए हैं, वो बल्ब जो जल रहे हैं अगर हम उन्हें बुझा दें, तो हमें जो विद्युत के बल्ब हैं उन्हें बुझा कर असली बल्ब यानी हमारे भीतर की असली रोशनी को, स्नेह की रोशनी को प्रकाशित करना है, प्रकाशमान बनाना है संसार को, है ना। बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिकल लाइट हैं उनसे आपको असली रास्ता असली पथ नहीं मिलेगा, बल्कि असली पथ आपको किससे मिलेगा, उस दिए से जो स्नेह का दीपक है। जब किसी अनजान आदमी से मुस्कुराकर हम गुड मॉर्निंग कहते हैं या नमस्ते कहते हैं या प्रणाम कहते हैं, तब स्नेह का दीपक दोनों तरफ चलता है, है ना। आगे कवि कहते हैं कि मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। आगे लिखते हैं कि दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब एक दीपक भी अगर रह गया स्नेह का प्रेम का, तो आप यकीन करिए कि जो रात है उससे सवेरा वापस लौटेगा, मतलब अंधेरे की रात स्नेह के दीपकों से काली रात खत्म हो जाती है, और जो स्नेह का सूर्य है स्नेह का दीप है उससे सारा तिमिर सारा अंधकार भाग जाता है। अब आप ये देखिए कि इस तरह की कविताएं, इस तरीके की कहानियां जो हिंदी साहित्य में हमारे पास बहुत हम लोग समृद्ध हैं, अगर हम पढ़ें ना बच्चों तो हमारे शब्द भी बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर कभी आप सोच के देखिए कि अभी आपने ये कविता सुनी है ना, अगर आप ये कविता में से दो शब्द बहुत अच्छे चुनना हो आपको, तो आप क्या चुनेंगे? कभी आप अपने घर में तिमिर का इस्तेमाल करके देखिए, कितना अच्छा लगेगा, आपके घर में सब अचानक चौंक जाएंगे कि अरे वाह बच्चे ने कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, है ना। अब जैसे उन्होंने कहा कि भले शक्ति विज्ञान में है निहित वो कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से, कितनी अच्छी बात है कि विज्ञान में ही शक्ति है जिससे हम अंधेरी रात में भी बल्ब जलाकर उजेला कर देते हैं, मतलब उजेले को वो पूर्णिमा से बता रहे हैं और अंधेरे को अमावस से। तो कभी कभी अच्छी कविताएं अच्छा साहित्य भी हमारी भाषा को ठीक करने में बहुत मदद करता है। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार मर्यादा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसका अर्थ क्या है? बच्चों मर्यादा का अर्थ सम्मान होता है, संयम होता है और शालीनता होता है। जब हम किसी से विनम्रता से बात करते हैं, उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए बात करते हैं और ऐसे शब्द चुनते हैं जो किसी को चोट ना पहुंचाए, बस वही भाषा की मर्यादा कहलाती है, है ना। वो कहते हैं ना कि मीठे बोल अमृत समान और कटु वचन तीर और जहर के समान होते हैं, है ना। एक बच्चा कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो लेकिन उसकी भाषा अच्छी नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उससे दूरी। पढ़ता है और बहुत तेजी से पढ़ता है। आपने गौर किया होगा कि छोटे बच्चे वही बोलते हैं जो वो घर में सुनते हैं। यदि घर में धन्यवाद कृपया क्षमा कर दीजिए जैसे शब्द सुनाई देंगे तो बच्चा वो सीखेगा, और यदि घर में हर समय ऊंची आवाज क्या कर रहे हो सुनते क्यों नहीं हो इधर आओ यहां बैठो, अगर ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होगा ना बच्चों से तो बच्चे भी वही बात करेंगे। टीवी मोबाइल इंटरनेट इतना एक्सपोजर आप लोगों के लिए बच्चों अच्छा नहीं है। हम जो कार्टून देख रहे हैं आज, जो वीडियो देख रहे हैं, जो रील्स देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब में आप देखिएगा कि भाषा की मर्यादा धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। मतलब कई बार मैंने देखा है कि आजकल बच्चे चल भग जा तू इसको बहुत आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, हट यहाँ से सुना ये, धीरे धीरे बच्चों को इसमें मजा नजर आने लगता है, हाँ वो इसको अपनी भाषा का हिस्सा ही बना लेते हैं। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि कैसे हैं आप, तो कैसा लगेगा आपको? और मैं ये कहूँ और बता सब ठीक चल रहा है, कैसा लगेगा आपको? कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है? पहला वाला ना, क्योंकि उसमें आपके लिए भी एक सम्मान है। आप उम्र में छोटे हो लेकिन फिर भी मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ आप ठीक हो ना, घर से कुछ खाकर आए हो। अब यहाँ पर कोई मैं पूछ लूँ तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है, भूखा वूखा तो नहीं है? दोनों बातें एक हैं ठीक, लेकिन क्या है, दोनों बातों में सबसे बड़ा अंतर है लहजे का, सबसे बड़ा अंतर है भाषा की मर्यादा का। और बच्चों ये तो हमने सीखना होगा क्योंकि हमें तो बहुत आगे जाना है ना। कवि भी कह रहे हैं ना, अभी जो कविता सुनाई उसमें, कि युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। हवा को पवन कहते हैं। उसने कई बार ऐसे खूबसूरत स्नेह के दीप बुझा दिए हैं, लेकिन तुमको क्या करना है, बार बार स्नेह का दीपक जलाना है। और जो मैंने आपसे कहा उसका भी ख्याल रखना है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो फिर आपको और ध्यान से भाषा का इस्तेमाल करना है। एक बार मैं एक घर में गई थी, वहाँ पर दादी बार बार कह रही थी कि बेटा बेटा हमारा सीरियल लगा दो, और बच्चा लगातार एक ही बात कह रहा था, दादी चुप करो यार, बहुत बोलती हो आप, नहीं लगा रहा मैं आपका। जो माता पिता थे उन्हें क्या लग रहा था, बच्चा लाड़ में बोल रहा है ना, कि ठीक है मैंने जब बोला ये बोल कैसे रहा है, तो जानते हैं उनके उस बच्चे के माता पिता ने मुझसे क्या कहा, अरे ये और उसकी दादी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनमें तो ये सब पूरे दिन चलता है, हम तो यहाँ बैठ के मज़े लेते हैं। ये बात हो सकता है कि किसी को अच्छी लगे, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी है ना। अगर दादी दोस्त हैं तब भी, दादी दादी तो पहले रहेंगी ना, दोस्त तो बाद में बनेंगी ना। दादी की उम्र, दादी का इतना लंबा अनुभव, वो सब इस भाषा के लायक है क्या? चुप रहो दादी, बहुत बोलती हो आप, इसके लायक हैं दादी? ना बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और आपको किसी से भी, मैं तो बोलती हूँ अपने दोस्तों से भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, दादी बहुत बड़ी बात होगी, दादी से तो बहुत और आपका रिस्पेक्ट भी दुगना हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी पापा की मम्मी है, तो आपको उस लिहाज से बोलना चाहिए है ना। और कभी ये प्रेम नहीं कहता कि आप अपनी भाषा का संयम भूल जाए है ना। कभी कोई किताब ये नहीं कहती कि किसी के प्रेम में पढ़कर या किसी से लाड़ में आप भाषा की मर्यादा भूल जाएं। क्योंकि बच्चों जो बातें अभी आपको मजाक लग रही हैं, वो थोड़ा बड़ा और हो जाओ आप लोग, फिर आपको लगेगा सब टोकेंगे, किसी के घर जाओगे सब टोकेंगे। और एक और चीज़ जो मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, एक और भाषा है, वो भाषा है ब्रो, वो भाषा है सिस, वो भाषा है क्या है, अधूरी भाषा। हाँ, जब हमारे पास पूरे शब्द हैं, हमारी भाषा समृद्ध है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि बच्चों हम जो चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करें है ना। आजकल लिख भी अधूरा अधूरा रहे है ना, प्लीज़ लिखना है तो PLZ लिख के काम चला लेंगे, सिस्टर लिखना है तो SIS लिख कर काम चला लेंगे। आपको किस चीज़ की जल्दी है सोचिए, यहाँ तो हमारे लिखने की भाषा भी कैसी होती जा रही है। लोग कहते हैं कि ये ट्रेंड है, लोग कहते हैं कि ये चलता है, पर अगर सब कुछ अगर आप चलाने लगे ना तो आप ही चलते हो जाओगे, मतलब आप अपना स्थान बनाकर नहीं रख पाओगे, आपकी जो खूबियां हैं उसको समेट के नहीं रख पाओगे, आप भी वो भेड़ चाल चलोगे। और भेड़ चाल का तो आपको पता ही है कि भेड़ चाल का मतलब क्या होता है, भेड़ चाल मतलब एक भेड़ अगर गलत दिशा में चल दी तो सारी भेड़ें उसको फॉलो करने लगती हैं है ना। तो हमारे पास तो दिमाग है ना बच्चों, हमें तो ये समझना है ना कि हमें क्या करना है। हमारी भाषा इतनी समृद्ध है, हम बहन भी तो लिख सकते हैं, बहन अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसके नाम से संबोधित कर सकते हैं, पूरा बोल सकते हैं। पर ये सिस ब्रो ये ठीक है कभी कभी के लिए, लेकिन इतना ट्रेंड फॉलो नहीं करें है ना। और आपको एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि दोस्ती का मतलब और बहुत अच्छी दोस्ती का मतलब अभद्रता नहीं होती है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत प्रगाढ़ मित्र हो गए तो सम्मान बिल्कुल ही कम हो गया, बिल्कुल घट गया, बिल्कुल मतलब सिरे से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको आप बिल्कुल कंधे पे हाथ रख के या हर वक्त उसका मजाक उड़ाकर उसे संबोधित करो, अरे छोड़ो इससे क्या होता है, ऐसे नहीं चलता बच्चों। अगर आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो तो और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करिए, आपको आनंद आएगा, है ना। और आज आपसे मैंने जो तीन भाषाओं की बात की, एक बोलचाल की भाषा, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत मैटर करती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उससे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज मायने रखती है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपकी मैडम कुछ पढ़ा रही होती हैं और आप पेन को ऐसे करके खटपट करते रहते हो, सुनाई आ रहा है आपको, सुनाई आया मैं आपसे बात करूं और बीच में ये डिस्टर्बेंस आता रहे, अच्छा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। ऐसे ही जब आपसे कोई बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, आप नजरें झुकाए बैठे हो, आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके की हमारा इग्नोरेंस जाहिर करता है। तो हमें इस पर भी काम करना है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे कि शब्दों की ताकत कितनी होती है, है ना। जैसे बच्चों को देखा है आपने, कुछ बच्चे हम कहते हैं ये बहुत ताकतवर बच्चा है, कहते हैं ये कुछ भी सामान उठा लेता है, ये बहुत एक्सरसाइज करता है, ये बहुत दूर तक दौड़ लेता है, कहते हैं। वैसे ही अब मैं आपको शब्दों की ताकत से परिचय करवाती हूँ। जैसे आपको बुखार होता है तो डॉक्टर दवा देता है, वैसे ही जब आप शिक्षक के पास जाते हैं वो ज्ञान देता है। लेकिन एक अच्छा इंसान अपने शब्दों से एक नहीं कई लोगों का मन जीत लेता है, बहुत लोगों का मन जीत लेता है। अब आप सोच के देखो, आप कोई काम करो और आपसे आपकी मम्मी बोले शाबाश बेटा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। आपका मन करता है कि आप दोबारा काम करो, है ना, और अच्छा करके दिखाओ। और वहीं एक बच्चा काम करके आए और उसकी मम्मा ये बोले ठीक है, दोबारा जब करो तो थोड़ा और ठीक करना, तो उसका क्या होता है, मनोबल हल्का सा टूट जाता है। ऐसे ही जब आपको कोई चीज़ कोई दे रहा है, आप उसको ये कह दो धन्यवाद, तो कितना अच्छा लगता है। और वहीं दूसरी ओर कोई कोई चीज़ दे और आप एकदम से पलट कर चल दो, उसको क्या लगता है, अरे मैंने इसको इतने अच्छे से चीज़ दी और इसने तो मतलब उसे जताया भी नहीं कि उसको कैसी लगी, उसको अच्छी लगी नहीं लगी, कुछ नहीं। फिर एक बार अगर गलती हो जाए कोई और आप एक बार में बिना किसी बहस के बोल दो ठीक है इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, कितनी बड़ी ताकत है ये। सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई खत्म हो जाती है एक सॉरी बोलने से, कितनी सारे लोग आपसे एक बार में इम्प्रेस हो जाते हैं एक गुड मॉर्निंग करने से, एक नमस्कार करने से, एक सुप्रभात बोलने से। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अपनी वोकैबुलरी पर बहुत काम कीजिए बच्चों, अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए, है ना। रोज 5 नए अच्छे शब्द सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, समाचार सुनिए, बड़ों से आदरपूर्वक बात कीजिए,

0: शब्द भी ऐसे ही होते हैं, है ना? एक बार मुंह से निकल जाए ना, वापस नहीं आ सकते। जैसे तकिए की रुई एक बार आप निकाल दो, फिर आप कितने भी उसको तकिए के भीतर डालने की कोशिश करो, या तो शेप बिगड़ जाएगा या तो वो तकिया पहले जैसा नहीं रहेगा। वैसे ही जब आप किसी से बुरे शब्द बोल देते हो, भले ही वापस आप जुड़ जाओ, दोस्ती हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में गांठ पड़ जाती है बच्चों। तो ठीक है, अब हम लोग संकल्प लेते हैं आज बाल सभा में, हर बार ही करते हैं। आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए, मैं जो जो बोलूंगी अब उसे आप दोहराएंगे। आज से हम सभी से सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि हर रोज नए 5 शब्द सीखें। आज से हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ना कोई कहानी या कविता पढ़कर ही सोएं। आज से हम कोशिश करेंगे कि नियमित पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ है उसे एक पेज में लिखने की कोशिश करेंगे। और अपने बड़ों से, अपने साथ के दोस्तों से, सभी से सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करके अपने व्यक्तित्व को और निखारेंगे। आंखें खोल लीजिए और अब अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए, क्योंकि आज की बाल सभा में इतना ही बच्चों, है ना? चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा, है ना? और हाँ, जो जो बातें मैंने आज आपसे कही है ना, उनको प्लीज़ फॉलो करना, उनका ध्यान रखना और उन पर अमल करके मुझे ज़रूर अगली बाल सभा में जब मैं आऊँ तो मुझे पता चलना चाहिए किसी न किसी बात से आपकी, कि आप घर में अच्छा व्यवहार कर रहे हो, है ना? और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे बताओ तभी पता चलेगा, मुझे तब भी पता चल जाएगा जब आपके बड़े आपसे खुश रहेंगे, है ना? तो बस अपने घर में कोशिश करिए कि सबसे अच्छे से बात कीजिए। हाँ, चलती हूँ, बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा,
2: भाषा की मर्यादा, ये विषय था आज के बाल सभा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मनीषा चतुर्वेदी ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: नमस्कार, ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। आइए आपको सुनवाते हैं विशेष कार्यक्रम जिसका विषय है कारगिल विजय दिवस।
1: दिल में समाई थी यही चाहत, वतन आजाद हो मेरा, आजाद हो मेरा। कहा वीरों ने दुश्मन से, चलेगा जोर न तेरा, जोर न तेरा। याद उनकी न भुला।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं करगिल विजय दिवस पर हमारी विशेष प्रस्तुति।
1: तुम ये दिन मुश्किल से आया है, जश्न आजादी मनाओ कि ये दिन मुश्किल से आया है।
0: हमारे देश की सीमा पर डटे जवानों का तो हम सब जितना भी आभार व्यक्त करें कम ही है। उन्हीं के त्याग और वीरता के कारण हम सब चैन से सो पाते हैं, दिन में अपनी मनमर्जी के मुताबिक डेली रूटीन पूरा कर पाते हैं। हमें दुश्मनों की नजर से हर पल हर क्षण सुरक्षित रखने के लिए बिना खुद की परवाह किए वे सीमा पर दिन रात डटे रहते हैं। हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी कई मोर्चों पर देखने को मिली है, और ऐसी ही बहादुरी 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले में युद्ध के दौरान देखने को मिली थी। 8 मई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ था ये युद्ध।
1: इसकी शुरुआत उस समय हुई जब 83 दिन चली इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटा दी थी। लेकिन पाकिस्तान की कायरता की ये दास्तां तब शुरू हुई थी
0: जब 3 मई 1999 को सीमा पार से कुछ हथियार बंद घुसपैठिए कारगिल जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में देखे गए। यह घुसपैठ पाकिस्तान की ऑपरेशन बद्र का हिस्सा थी और जिसका उद्देश्य कश्मीर को भारत से अलग करना और सियाचिन ग्लेशियर पर दबाव बनाना था।
1: भारतीय सेना को इस घुसपैठ की भनक मिलते ही ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना की वीरता देखकर दुनिया ने सलाम किया। भारतीय सेना के लिए ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था।
0: भारतीय सेना ने इस घुसपैठ के खिलाफ बेहद त्वरित गति से मोर्चा संभाला और तुरंत ही मौके पर 5 जवानों की एक पेट्रोलिंग टुकड़ी को जांच करने के लिए भेजा। लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठियों ने 5 जवानों को बंधक बना लिया।
1: 5 मई को सूचना मिली कि उन जवानों को घुसपैठियों ने मार डाला। पाकिस्तान की तरफ से 9 मई 1999 को ताबड़तोड़ गोले बरसाए गए। इससे कारगिल में भारतीय सेना के हथियार डिपो बर्बाद हुए, कई सैनिक जख्मी हो गए तो कुछ शहीद हो गए।
0: अगले 24 घंटे में सीमा पार से द्रास, ककसर और मुस्कोह तक कई घुसपैठिए पहुंच गए। ये पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की सहायता से एलओसी पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे।
1: पाकिस्तान ने मिसाइल से एक MiG-21 और MiG-27 को मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को बंधक बनाया। इन्हें 3 जून 1999 को बतौर युद्ध बंदी रिहा किया गया। 28 मई को पाकिस्तान ने वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जिससे हेलीकॉप्टर में मौजूद 4 भारतीय जवान शहीद हो गए।
0: मई के मंथ मिड में भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में मौजूद जवानों को कारगिल की तरफ रवाना किया और 26 मई को भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के कब्जे वाले पोजीशन पर गोले गिराने शुरू किए।
1: 1 जून 1999 को करीब 217.4 किलोमीटर लंबे राजमार्ग में पाकिस्तानी सेना के तोप के गोले लगातार गिर रहे थे। इस शेलिंग से लद्दाख का हिस्सा बाकी देश से कट गया था। इंडियन आर्मी के हथियार, मेडिकल सप्लाई और रसद लद्दाख तक नहीं पहुंच पा रहे थे।
0: NH1 2 लेन वाली ये सड़क श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। पहाड़ी एरिया की घुमावदार और पतली सड़क होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक धीमी रहती है। हमारे जवानों ने विषम परिस्थितियों जैसे बहुत ही ज्यादा ठंड के साथ ऑक्सीजन की कमी के बीच दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करते हुए भी अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया।
1: और यही NH-1 भारतीय सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। पाकिस्तानी फौजी हाईवे के सामने की तरफ ऊंची पहाड़ियों पर थे, वहां से गोलीबारी कर रहे थे। हमारे लिए इस हाईवे को बचाना बेहद जरूरी था।
0: पाकिस्तानी फौजी इस सड़क पर मोर्टार्स, आर्टिलरी और एंटी एयरक्राफ्ट गन से लगातार हमले कर रहे थे, पर ऐसे में इस सड़क पर चल पाना बेहद ही मुश्किल था।
1: 6 जून को भारतीय सेना ने टेरिबल अटैक किया और नतीजे में 9 जून को बटालिक सेक्टर की दो महत्वपूर्ण पोजीशंस पॉइंट 4812 और जुबार हाइट्स सेना के कब्जे में वापस आ गई।
0: बटालिक सेक्टर की पॉइंट 4812 एक ऊंचाई वाली जगह है। इस पोजीशन पर कब्जा करने के लिए लेफ्टिनेंट किशिंग क्लिफोर्ड नोग्रम के नेतृत्व में एक डेयरिंग अटैक किया गया था और आखिरकार इस पोजीशन पर कब्जा भारतीय सेना ने कर लिया।
1: इसी तरह बटालिक सेक्टर में एक और महत्वपूर्ण रणनीतिक पोजीशन जुबार हाइट्स, जिसे कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर बत्रा हिल भी कहा जाता है, उस पर भी कब्जा कर लिया गया था। इन दोनों पोजीशंस पर दोबारा कब्जा करने से भारतीय सेना को कई फायदे हुए थे।
0: एक तो इस पूरे इलाके पर भारतीय सेना का कंट्रोल पावर बढ़ाने में हेल्प मिली, दूसरे पाकिस्तानी सेना के लिए रसद और संचार लाइनों को बाधित करने में भी सफलता हासिल हो सकी।
1: इसी तरह भारतीय सेना के बाघों ने टोलोलिंग चोटी टाइगर हिल को पाकिस्तानियों से मुक्त कराया। यहीं से कारगिल जंग में भारत की सफलता की कहानी लिखी जाना शुरू हो गई थी।
0: समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट यानी 4,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टोलोलिंग चोटी श्रीनगर लेह मार्ग पर रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, जिस पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था।
1: तब पाकिस्तान से कारगिल को आजाद कराने के लिए तोलोलिंग चोटी को फतह करने के अभियान में यही नारा गूंज उठा था, विजय या वीरगति।
0: कारगिल युद्ध में जीत के लिए टोलोलिंग चोटी वापस लेना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि दुश्मन सेना इस चोटी के ऊपर से बड़ी ही सरलता से हमारी सेना को निशाना बना रही थी।
1: हमारी सेना ने इस चोटी को वापस लेने के लिए कई हमले किए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण लड़ाई 14 मई से शुरू होकर 14 जून तक यानी पूरे एक महीने तक चली, जिसे टोलोलिंग की लड़ाई के रूप में जाना जाता है।
0: और इस लड़ाई में भारतीय सेना को अपने कई सैनिकों को खोना पड़ा, लेकिन अंततः 14 जून को इस बेहद कठिन टोलोलिंग चोटी पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया और इस जीत ने जंग का रुख मोड़ दिया था।
1: टोलोलिंग पर फिर से कब्जा करने के बाद कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की जीत तय हो चुकी थी। उसके बाद 3-4 जुलाई की रात भारतीय सेना के 3 रेजिमेंट सिख, ग्रेनेडियर्स और नागा रेजिमेंट ने टाइगर हिल पर दबिश दी।
0: 4 जुलाई 1999 को सुबह होते होते भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को धूल चटा दी और 12 घंटे तक चली लड़ाई के बाद भारतीय सेना के बाघों ने टाइगर हिल पर वापस कब्जा कर लिया।
1: पहले टोलोलिंग चोटी, फिर सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर जीत का झंडा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था खुशाल ठाकुर और उनकी यूनिट 18 ग्रेनेडियर को। 18 ग्रेनेडियर्स ने इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई।
0: 18 ग्रेनेडियर्स 1976 में बनाई गई भारतीय सेना की एक प्रसिद्ध पैदल सेना रेजिमेंट है। कारगिल युद्ध की इस जीत में 18 ग्रेनेडियर्स के कई सैनिकों ने वीरता और बलिदान की एक बड़ी भूमिका अदा की।
1: इस ऐतिहासिक विजय अभियान के लिए 18 ग्रेनेडियर्स को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 52 वीरता सम्मानों से नवाजा और ये भारत की मिलिट्री हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है।
0: टाइगर हिल पर कब्जा करने में 18 ग्रेनेडियर्स की टीम का नेतृत्व करने के लिए कर्नल बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हवलदार योगेंद्र यादव को देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल खुशाल ठाकुर को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया।
1: इसके अलावा एक महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, एक शौर्य चक्र, 19 सेना पदक और दूसरे वीरता पुरस्कारों से नवाजा गया। साथ ही कारगिल थिएटर ऑनर, टाइगर हिल और टोलोलिंग बैटल ऑनर 18 ग्रेनेडियर को दिए गए।
0: भारतीय सेना ने आखिरकार 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी घुसपैठियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया और कारगिल में विजय प्राप्त की।
1: मई 1999 से लेकर जुलाई 1999 तक चले इस युद्ध में हमारे बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि वीरता और शौर्य की एक ऐसी मिसाल पेश की जो हमेशा के लिए यादगार बन गई।
0: और इस ऐतिहासिक जीत के पीछे हमारे उन वीर सैनिकों का बलिदान है जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस युद्ध में 500 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए और 1300 से अधिक घायल हुए।
1: हर साल 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस उस दिन की याद दिलाता है जब 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तानी घुसपैठियों से कारगिल की रणनीतिक ऊंचाइयों को हासिल किया था। भारतीय सशस्त्र बलों की पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन, मिलिट्री स्किल्स और डिप्लोमेटिक बैलेंस के प्रतीक इस वॉर को न सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री के रूप में बल्कि राष्ट्र की कलेक्टिव विल यानी सामूहिक इच्छा शक्ति के साथ साथ स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग की बेहतरीन मिसाल के रूप में भी याद किया जाता है। भारत की विजय गाथा लिखने वाले तमाम सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 26 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता होने के बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई थी।
0: कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को हराया था और इस लड़ाई में हमारे कई सैनिक शहीद हुए। भारतीय जवानों ने अपने खून का आखिरी कतरा तक देश के लिए समर्पित कर दिया।
1: इन वीर सैनिकों और उनकी असाधारण वीरता पर देश को हमेशा हमेशा नाज रहेगा। कारगिल युद्ध के कई हीरो थे। इनकी बहादुरी के कारण भारत ने अपने दुश्मनों को भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ पाने में सफलता पाई।
0: इनमें सबसे पहला नाम आता है कैप्टन विक्रम बत्रा का। विक्रम बत्रा जब छुट्टियों में घर आए थे तो उन्होंने दोस्तों और घर वालों से कह दिया था कि या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊंगा या उसमें लिपटा हुआ आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा।
1: 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश में जन्मे 13JAK राइफल्स विक्रम बत्रा के दोनों पेरेंट्स स्कूल टीचर थे। पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा और माँ श्रीमती कमल कांता जी।
0: वे जून 1996 में मानेकशॉ बटालियन में भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हुए। 19 महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1997 को भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन दिया गया।
1: कुछ प्रशिक्षण और कई कोर्स पूरे करने के बाद उनकी बटालियन 13JAK RIF को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जाने का आदेश मिला। 5 जून को बटालियन के आदेश बदल दिए गए और उन्हें जम्मू कश्मीर के द्रास जाने का आदेश दिया गया।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध का हीरो माना जाता है और टोलोलिंग नाले के ऊपर स्थित चोटी 5140 पर दोबारा कब्जा करने में उन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिशन के दौरान उन्होंने सफलता का कोड बनाया था, ये दिल मांगे मोर।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा चोटी 5140 पर कब्जा करने के बाद एक और दूसरे मिशन चोटी 4875 पर कब्जा करने के लिए गए। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं किया जा सकता। कि ये भारतीय सेना द्वारा किए गए सबसे कठिन अभियानों में से एक था। इस युद्ध में उनके एक साथी को गोली लग गई थी
0: और अपने घायल साथी को बचाते हुए वे खुद घायल हो गए और आखिरी सांस तक उन्होंने मोर्चा संभाले रखा।
1: शेर शाह के नाम से फेमस विक्रम बत्रा के अदम्य साहस को पूरा देश सलाम करता है। 1999 में कारगिल युद्ध में उनकी शहादत के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश की आन बान और शान के लिए एक और वीर सैनिक ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी टीम को दुश्मन सैनिकों को खदेड़ने का काम सौंपा गया था और उन्होंने घुसपैठियों को पीछे धकेलने के लिए कई हमले किए।
1: दुश्मन की भीषण गोलीबारी के बीच भी गंभीर रूप से घायल अधिकारी ने हमला जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः बटालिक सेक्टर में जॉबर टॉप और खालूबर पहाड़ी पर कब्जा कर लिया गया।
0: कारगिल युद्ध में ये शौर्य दिखाया था 1/11 गोरखा राइफल्स के सैनिक कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने। उनका जन्म 25 जून 1975 को रोधा गांव सीतापुर यूपी में हुआ था। पिता श्री गोपीचंद पांडे और मां का नाम श्रीमती मोहिनी पांडे।
1: कैप्टन मनोज कुमार पांडे

0: पांडे ने
1: ग्रेनेडियर्स के महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट बलवान सिंह जी के हरियाणा के रोहतक जिले में अक्टूबर 1973 को जन्म हुआ था। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को 3 जुलाई 1999 को अपनी घातक प्लाटून के साथ टाइगर हिल की चोटी पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
0: वे अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए 16,000 फीट की बर्फ से ढकी खड़ी चट्टानों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे और उन्होंने चुपके से चोटी पर दुश्मनों के सामने पहुंचकर उन सबको चौंका दिया था,
1: जिसके बाद शुरू हुई गोलीबारी में लेफ्टिनेंट बलवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, 4 दुश्मन सैनिकों को मारकर दुश्मन की टीम को घेर लिया। उनकी प्रेरणादायी नेतृत्व क्षमता और बहादुरी ने टाइगर हिल पर कब्जा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: अगले चर्चित हीरो हैं 18 ग्रेनेडियर्स के ही परम वीर चक्र विजेता नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। 10 मई 1980 को करण सिंह यादव और संतरा देवी के घर जन्मे योगेंद्र सिंह परम वीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति। उनकी बटालियन ने 12 जून 1999 को टोलोलिंग टॉप पर कब्जा कर लिया और इस दौरान 2 अधिकारियों, 2 जूनियर कमीशन अधिकारियों और 21 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
1: कारगिल युद्ध के एक और हीरो थे राइफलमैन संजय कुमार, जिन्होंने 4 जुलाई 1999 को मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 पर हमला करने वाले पिलर का नेतृत्व किया। दुश्मन के बंकर से होते हुए उन्होंने न सिर्फ दुश्मन को हराया बल्कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें जीत दिलाई। उनके साहस और समर्पण के लिए उन्हें परम वीर चक्र से नवाजा गया।
0: देहरादून के मेजर विवेक गुप्ता के प्रेरक नेतृत्व में भारी तोपखाने और स्वचलित गोलाबारी के बावजूद वे दुश्मन के करीब पहुंचने में सफल रहे। जैसे ही कंपनी दुश्मन के सामने आई, तेज गोलाबारी की चपेट में आ गई
1: और इस गोलाबारी में कंपनी के 3 सैनिकों को गोली लगी। मेजर विवेक गुप्ता ने त्वरित बुद्धि का इस्तेमाल किया और उन्होंने दुश्मन के ठिकाने पर रॉकेट लॉन्चर दाग दिया और हैरान दुश्मन के संभलने के पहले ही दुश्मन के ठिकाने पर हमला कर दिया।
0: उन्हें 2 गोलियां लगी लेकिन वे रुके नहीं और खुद घायल होने के बावजूद 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। युद्ध के दौरान दुश्मन की गोलियों का सीधा सामना करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके प्रेरक नेतृत्व और वीरता के कारण टोलोलिंग चोटी पर दोबारा कब्जा कर सके। उन्हें मरणोपरांत भारत के 2 सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: ऐसे ही एक और वीर सपूत थे कैप्टन अमोल कालिया। हमेशा से एक सैनिक बनने की ख्वाहिश के चलते उन्होंने इंजीनियर बनने की बजाय नेशनल डिफेंस एकेडमी या आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में जाने का पक्का इरादा कर लिया था।
0: युद्ध के दौरान पर्वतीय युद्ध में माहिर कैप्टन कालिया की टीम को पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे से पर्वत चोटी छुड़ाने के मिशन पर भेजा गया। उन्होंने रात के अंधेरे में चोटी पर हमला किया और दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, लेकिन कैप्टन कालिया ने आखिरी सांस तक मैदान नहीं छोड़ा।
1: वे अपनी जिंदगी तो हार गए लेकिन अपनी जीत अपने नाम दर्ज करा ली। उन्हें और उनके साथियों को युद्ध के सबसे बहादुर सैनिकों के रूप में याद किया जाता है। इनके अलावा कारगिल युद्ध के हीरो में शुमार सुल्तान सिंह नरवरिया, लायंस नायक दिनेश सिंह भदौरिया और लायंस नायक करण सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना के कई सैनिकों ने बलिदान दिया। कारगिल युद्ध के हीरो की बहादुरी, साहस और जुनून की कहानियां अनंत है, जो सभी को प्रेरणा देती है और हमेशा देती रहेंगी।
1: ये सभी वीर सैनिक बेमिसाल शौर्य और वीरता की अद्भुत मशालें हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाती रहेंगी और भारत भाग्य विधाता के साथ ही अमर रहेंगे। इन वीरों ने अपने अदम्य साहस, नेतृत्व और बलिदान से भारत को गौरवान्वित किया और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
0: लगेंगे हर बरस मेले शहीदों की मजारों पर, बस इन्हीं पंक्तियों को हकीकत का रूप देता है आज का दिन। करीब 3 महीनों तक चले इस युद्ध में शामिल वीर सैनिकों की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।
1: और भारतीय सेना ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में लद्दाख के द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल भी बनवाया है। कारगिल शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा द्रास पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था।
0: द्रास अब अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में आता है। कश्मीर की सीमा से करीब 99 किलोमीटर दूर ये कारगिल जिले में है। द्रास युद्ध स्मारक का उद्घाटन 26 जुलाई सन 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था।
1: भारतीय सेना की जांबाजी और पाक सेना पर कारगिल विजय दिवस की याद को ताजा बनाए रखने के लिए लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास सेक्टर में सुर्ख लाल पत्थरों से कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है।
0: हर साल यहां 26 जुलाई को शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। इस यादगार जगह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी डेवलप किया गया है। चूंकि द्रास एक ठंडी जगह है तो इसीलिए स्पेशली समर सीजन में बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं।
1: इस मेमोरियल में पहुंचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि यहां उन सभी स्मृतियों को सहेज कर रखा गया है जो उन वीर सैनिकों की याद दिलाती है जिन्होंने 99 के युद्ध में अपनी जानें गंवा दी थी।
0: यहां वॉर म्यूजियम में वो चिट्ठियां लगी हैं जिन्हें वीर जवानों ने आखिरी बार अपने परिवारों को लिख कर भेजी थी। वो बम, हथियार जो कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हुए, उनके नमूने भी इस वॉर मेमोरियल में रखे हुए हैं।
1: इसके अलावा यहां पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों के पास से बरामद आईडी भी रखे गए हैं। पाक सैनिकों के इन आईडी की खासियत ये है, यही सबूत बने थे कि पाकिस्तान की सेना इस लड़ाई में शामिल थी।
0: कहा जाता है कि इस जगह को सबसे पहले इंडियन आर्मी के 108 इंजीनियर रेजिमेंट के टुकड़ी ने वर्ष 2000 में बनाया था। बाद में इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली इस मेमोरियल का कंस्ट्रक्शन करवाया। सेंटर में एक गुलाबी पत्थर से स्मारक बना है जिस पर ऑपरेशन विजय की अमर गाथा का जिक्र किया गया है।
1: इसके साथ ही एक गोल्डन स्ट्रीप पर इस लड़ाई में शहीद होने वाले सभी भारतीय सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। अमर जवानों को समर्पित इस मेमोरियल का उद्घाटन फॉर्मल फार्म में 9 नवंबर 2004 को किया गया था। यहाँ एक हेलीपैड भी है।
0: शहीदों की याद में बनाया गया ये स्मारक देश के उन जवानों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारी सुरक्षा करते करते अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी शौर्य गाथा का प्रतीक है ये मेमोरियल। हमें उनकी वीरता और शौर्यता के किस्से सुनाता है।
1: हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में यहाँ विशेष समारोह आयोजित किया जाता है। 26 जुलाई 2024 को इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल यानी कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध के वीर जवानों को नमन किया था।
0: देखा जाए तो कारगिल की लड़ाई शुरू में भारत के लिए काफी मुश्किल सी साबित हो रही थी, लेकिन हमारी एयरफोर्स और बोफोर्स ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर सारा काम किया कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और भारतीय सेना के हमलों ने पहाड़ों की चोटियों पर बनी पाकिस्तानी चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया
1: और इस युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ा।
0: 26 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। आज वो दिन है जब हम अपने वीर सपूतों के अदम्य साहस, बलिदान और शौर्य को याद करते हुए कारगिल विजय दिवस मनाते हैं।
1: आज कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर भारतीय सेना ने टोललिंग चोटी पर एक कैंपेन चलाया है। जिसमें टोलोलिंग की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली टुकड़ियों के 37 सैनिकों के एक दल ने चोटी पर चढ़कर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा फहराया।
0: सेना का मानना है कि ये कैंपेन सिर्फ एक एडवेंचर एक्सपेडिशन यानी साहसिक अभियान ही नहीं है, बल्कि मेमोरीज के साथ साथ चिंतन और श्रद्धा का भी सफर है, जिसका उद्देश्य देश के इतिहास को आकार देने वाली साहस और बलिदान की कहानियों से भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना है।
1: आज हम सभी कारगिल विजय दिवस पर उन सभी वीर बहादुरों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की परवाह नहीं की और अपनी जान की बाजी लगा दी। उनके बलिदान और अदम्य साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी और सुरक्षा हमारे जवानों के अथक प्रयासों और बलिदानों का ही परिणाम है। उनकी वीरता ही हमारी विरासत है। हम सभी को उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए।
0: साहस और सम्मान का दिन कारगिल विजय दिवस। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारा देश वीर जवानों की छत्र छाया में हमेशा हमेशा महफूज रहे, खूब फूले फले, उन्नति करे।
1: शुभकामनाओं के साथ कारगिल के वीर शहीदों को सादर नमन।
0: इसी के साथ कारगिल विजय दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम में मार्गदर्शन मिला संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग मिला सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी, और मेरे साथ थे
1: मैं विजयकांत नायक।
0: आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कारगिल विजय दिवस पर हमारी विशेष प्रस्तुति 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है।
0: नमस्कार।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है सर्जिकल स्ट्राइक। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले।
3: 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
4: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, एक बात जो सर्वविदित है वो ये है कि हमारा देश, ये भारत भूमि सदियों से अहिंसा और शांति का संदेश पूरे विश्व को देती आई है। मानवता और विश्व बंधुत्व हम भारतीयों का स्वभाव रहा है और इन्हीं जीवन मूल्यों को हम भारतीय पीढ़ी दर पीढ़ी जीते आए हैं और आज भी इन्हीं पर विश्वास करते आए हैं। लेकिन श्रोताओं, आजादी के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, समय के साथ साथ अपने अनुभवों और परिस्थितियों से हमने ये सीखा कि अपने राष्ट्र की अखंडता और अस्मिता की सुरक्षा के लिए ये जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है कि हमारी शांति प्रियता और अहिंसा की नीतियों का किसी के भी द्वारा गलत फायदा ना उठाया जाए। हमारे संयम और आत्मनियंत्रण को कोई भी हमारी कमजोरी ना समझे। श्रोताओं, आजादी के बाद युद्ध की कई विभीषिकाओं को झेल चुका भारत ये जानता है कि युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम विकल्प ही होता है और यही सत्य भी है। और इसीलिए कई बार शत्रुओं के उकसाने और सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ करने, उपद्रव करवाने जैसी गंभीर परिस्थितियां निर्मित होने के बावजूद हमारी सशस्त्र सेनाएं बेहद ही संयमित और सुनियोजित जवाबी कार्यवाही में ही विश्वास रखती हैं। श्रोताओं, हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा किए गए ऐसे कई ऑपरेशंस का अपने कार्यक्रम में हम पहले भी जिक्र करते आए हैं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विगत कुछ वर्षों में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं जो हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा देश की सुरक्षा के लिए चलाए गए। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्हें भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने का लगभग 20 वर्षों का अनुभव है और अपनी सेवाओं के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित भी किए हैं। स्वागत है सर एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में।
5: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। बहुत सही कहा आपने
4: जी
5: कि जो हमारा संयम है और जिस शांति से रहना चाहते हैं
4: जी,
5: वो शायद काफी लोगों को भाता नहीं है
4: जी।
5: हमारी हमेशा ये पुरजोर कोशिश रही है कि हम कभी किसी को तंग ना करें
4: जी।
5: लेकिन इसके साथ साथ जो है, अगर आप देखें हमारी देश की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, उसके लिए टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी इज अ मेजर चैलेंज। बीते कुछ इयर्स में हमने देखा है कि खासकर जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है
4: जी,
5: उसने जो है हमारे देश में काफी जो है हमारी आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है
4: जी।
5: और ये बात सच है कि वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाए हैं, पर फिर भी कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि हमें भी लगा कि ये हमारा जो संयम है, जो आत्म नियंत्रण है, इसकी हद पार हो चुकी है
4: जी। हाँ, हर बार संयम की परीक्षा ली जाती है।
5: इसके लिए मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है
4: जी, बिल्कुल।
5: खासकर कि आप देखते हैं कि आपके सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहा है, उनको बेदर्दी से मारा जा रहा है
4: जी।
5: तो हर एक को जो है एक वक्त आता है जब एक मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है
4: जी, बिल्कुल।
5: और आई मस्ट से कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर काफी अच्छे डिसीजन लिए हैं
4: जी।
5: They came out with very in a firm and resolute manner to deal with all the terrorist and insurgent attacks
4: जी।
5: ठीक है, आई एम वेरी श्योर पूर्वा जी, आपको भी ऑप सिंदूर के बारे में याद
4: जी,
5: होगा
4: जी, बिल्कुल,
5: जो पिछले साल हुआ था।
4: हाँ जी सर, बड़ी हृदय विदारक घटना थी वो
5: जी, बिल्कुल जी। 22 अप्रैल की बात है जो है पहलगांव में,
4: हाँ,
5: श्रीनगर
4: जी,
5: में
4: जी।
5: एक बैसरान वैली में जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है
4: जी।
5: बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट जो है जगह जगह से जो आए हुए थे वो उस वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से अपना आनंद ले रहे थे एंड दे वर एंजॉयिंग अ लाइफ देयर एंड ऑल ऑफ अ सडन दे वर अटैक्ड बाय फोर मिलिटेंट्स, ठीक है, जिनके पास की बहुत ही ऑटोमेटिक एंड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, M4 राइफल्स, AK-47s थी, और उन्होंने अचानक आके इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया
4: जी।
5: अब ये निहत्ते लोग
4: जी जी
5: है ना, उनके पास कहीं भागने की जगह नहीं, तो दे एक्चुअली किल्ड ऑलमोस्ट 26 टूरिस्ट और इसमें उन्होंने बहुत सारे मतलब मोर देन डजन पीपल वर एक्चुअली इंजर्ड आल्सो। हमने सबने देखा था, टीवी पे भी देखा था,
4: तो बड़ी हृदय विदारक,
5: ठीक है। और जिस तरह से उन्होंने पूछ पूछ के मारा है लोगों को कि क्या आप हिंदू हो या मुसलमान हो, पॉइंट ब्लैंक पे उन्होंने मारा था जो है लोगों, मतलब ये एक तरह से मतलब इट इज कॉवर्डिस, ठीक है, ये बहुत ही मतलब जो है ना एक तरह से कायरतापूर्ण हरकत है। एंड जब आप उसकी डिटेल्स में जाते हैं, हमने देखा था कि दिस अटैक वॉज प्लान्ड, वेरी वेल प्लान्ड, इट वॉज वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, और इसको मतलब जो है पाकिस्तान की तरफ से पूरा सपोर्ट था, वहाँ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये किया था उन्होंने प्रॉपर इसकी जो है एरिया की रेकी करी थी, मतलब उन्होंने देखा था कि इस इलाके में काफी टूरिस्ट आते हैं, जगह जगह से आते हैं, और उसके बाद इनके यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से जो है उन लोगों के पास कुछ हो नहीं रहता है, तो दे कोऑर्डिनेटेड। हाँ, एंड ये उस समय हुआ कि जब पीक टूरिस्ट सीजन चल रहा था अप्रैल के महीने में, उनका एम तो मतलब ये था कि मतलब इस अटैक से जो कश्मीर में जो पीस है, जो शांति बरकरार थी कश्मीर वैली में, उसको भंग हो जाए, लोगों के अंदर एक दहशत फैले, और जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है उसको इंटरनेशनलाइज करें वो। तो इस इंसिडेंट के बाद जैसे आपको भी याद हो गया मतलब पूरा जो कंट्री है इट वाज शॉक्ड
4: जी बिल्कुल
5: हिल गया एवरीबॉडी वाज शॉक्ड
4: जी
5: एंड होल नेशन डिमांडेड ओनली वन थिंग कि देयर शुड बी अ सॉलिड एंड प्रॉपर काउंटर टू दिस टेररिज्म इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और वो बहुत जरूरी है तो गवर्नमेंट ऑल्सो मतलब एक्टेड इन ए वेरी रिजोल्यूट मैनर उन्होंने जो है इसके लिए प्लान करना शुरू किया क्योंकि देखिए कि ऐसा नहीं हो सकता एक झटके में तो नहीं होता है यू हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ स्टेप्स ठीक है गवर्नमेंट हैज टू टेक लॉट ऑफ पीपल इनटू कॉन्फिडेंस ठीक है तो डिप्लोमेटिक चैनल से थे उसको एक्टिवेट किया गया तो उनका मेन ये था कि जो पाकिस्तान है उसका ये जो सपोर्ट है टेररिस्ट को उसको एक्सपोज करा जाना चाहिए एंड साथ ही साथ उनको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिससे कि वो दोबारा करने से पहले एक बार सोचे कि ये मतलब हम अगर करेंगे तो हमारा भी कोई नुकसान कर सकता है अभी तक तो हमेशा ऐसा लगता था कि पाकिस्तान को कि ठीक है जब वो होता है तो इंडिया कुछ नहीं करता
4: वही संयम वाली जो बात है
5: बिल्कुल तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि वी विल कैरी आउट अ रिटेलिटरी एक्शन जिसमें कि जो वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कैंप लोकेशन है उसके ऊपर अटैक करेंगे देखिए ये जो है देश में स्ट्रेटेजिक लेवल यानी कि बहुत बड़े लेवल पे ये प्लानिंग चल रही थी कि कौन कौन से टारगेट्स हैं जहाँ पे कि ये टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में कहाँ उनके सेफ हेवन्स हैं कहाँ उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे भी वो लोग करते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के भी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से उनको सपोर्ट मिलता है तो ये सब टारगेट्स वगैरह प्लान हो रहे थे इस बीच में जो ग्राउंड के ऊपर जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ था इसके लिए जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ की उनके ऑपरेशंस चल रहे थे इट वाज अ वेरी इंटेंस ऑपरेशंस वर लॉन्च्ड कि उनको जो है हमको पकड़ना है और उनको खत्म करना है तो एग्जैक्टली आफ्टर वन मंथ 22 मई को बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस पता लगा था कि श्रीनगर के पास एक एरिया है उसको बोलते हैं दाचीगाम फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं तो वहाँ इंटेलिजेंस थी कि यहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था ये ऑपरेशंस में प्राइमरीली जो हमारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसके अलावा भी थे एंड इनको जो हाइड आउट था उसको मतलब दे वर एबल टू लोकेट इट एंड दे किल्ड ऑल द थ्री जहाँ पे तीन उनको टेररिस्ट मिले थे उनको तीनों को मार डाला था एंड बाद में जो है पता चला था कि ये जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने कि ये पहलगाम का अटैक किया था और ऐसे पूरे मतलब वहां से प्रूफ भी मिले थे कि ये पाकिस्तान से आए थे जो है लेकिन ये टेररिस्ट मारने से ही जो है रिटेलिएशन खत्म नहीं हुआ
4: समस्या का हल भी नहीं हो सकता
5: नहीं हुआ था तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि भाई ये तो मतलब टेररिस्ट थे लेकिन उनको जिसने सपोर्ट किया है जो उनको बार बार सपोर्ट कर रहा है उसको मतलब वी मस्ट गिव अ सीवियर ब्लो
4: जी बिल्कुल
5: उनके ऊपर भी मतलब एक दमदार हथौड़ा तो मारना चाहिए है उनको भी मतलब लगे कि जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा भारत जो है इसके ऊपर जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देगा एंड इसी के कारण जो है ऑप सिंदूर लॉन्च किया गया था अब देखिए सिंदूर नाम रखा ये उन सारी जो महिलाएं हैं
4: जी सर
5: जो विधवा हुई थी
4: जी जी जी
5: ये उनकी तरफ से ये एक बदला था
4: जी वो तस्वीरें तो कभी भूल नहीं सकते सर हम
5: एग्जैक्टली जो है
4: वो बिलकती महिलाएं और बच्चे जो है
5: बिल्कुल उनकी तस्वीरें तो ये उनका रिवेंज था
4: जी
5: ऐसे टारगेट्स मतलब सेलेक्ट किए गए कि जिनके बारे में हमें रिलायबल इंटेलिजेंस थी वहाँ पे जो है टेररिस्ट का वो है काम से या उनके जो है हेडक्वार्टर से ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं तो ये जो टारगेट्स थे इसमें एलओसी के पास भी थे आईबी के पास भी थे कुछ डीप इनसाइड भी थे कहते हैं कि 9 टारगेट्स सेलेक्ट किए थे ये ऑपरेशन हमारा 7 मई को शुरू हुआ था एंड विद इन नेक्स्ट 25-30 मिनट्स जो है इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने जो उनको डेजिग्नेटेड टारगेट्स दिए गए थे उन पे एक साथ जो है हमला किया जो है इंडियन आर्मी ने आर्टिलरी ड्रोन्स और जो प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स होती हैं वेपन्स होते हैं उनसे जो है टारगेट्स को एंगेज किया था और उसी के साथ साथ उसी समय जो हमारी इंडियन एयरफोर्स थी उन्होंने जो डीप इनसाइड पाकिस्तान में जो टारगेट्स थे उनके ऊपर अटैक किया था कोई याद होगा कि उस समय राइफल्स का इस्तेमाल हुआ था एंड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स जो है लॉन्च हुई थी मिशंस यूज हुए थे इट वाज अ वेरी मतलब एडवांस्ड काइंड ऑफ ऑपरेशन एंड एक जो बहुत अच्छी बात थी इस ऑपरेशन में, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो ध्यान में रखा गया था कि हमारा एम किसी सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना,
4: वहां के आम नागरिकों पर कोई लक्ष्य नहीं था,
5: नहीं
4: हमारा
5: था, लक्ष्य नहीं था
4: जी।
5: दूसरा हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि हम इसके कारण जो है एक वॉर एस्केलेट करना चाहते हैं, सिचुएशन एस्केलेट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वी वांटेड टू प्रोजेक्ट इट दैट इफ समथिंग हैपेंस वी आर केपेबल एंड वी विल डेफिनेटली टेक द रिवेंज ऑफ इट। दैट वाज अ क्लियर कट मैसेज विच वॉज देयर। एंड तीनों जो हमारे सर्विसेज हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम नेवी वॉज अलर्टेड, दे वर एक्टिव इन अरेबियन सी कि अगर वहां से कुछ हो सकता है तो उसमें मतलब जो है वो एक्शन ले सके। तो जितने जो हमारे टारगेट थे, डेजिग्नेटेड टारगेट थे, दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड।
4: यहाँ पर सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, इसका यह मतलब है कि हमारी भारतीय यानी विशेष रूप से थल सेना ने सीमा पार करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें हमारे हथियारों से ही हमने वो काम कर डाला।
5: एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो लोकेशंस थी ऐसी थी जो हमारे जो वेपन्स हैं हमारे पास, आर्टिलरी है, इसमें स्पेशली ड्रोन्स का काफी अच्छा इस्तेमाल हुआ था, वो उसकी हद में थे जो आर्मी को टारगेट्स मिले थे। तो देयर वाज नो नीड टू क्रॉस ओवर। एंड जैसे मैंने अभी जिक्र किया, जो वेपन्स जैसे यूज किए थे, बहुत एडवांस तरह के वेपन्स थे ना, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, एक लॉयटरिंग एमिनेशन करके बोलते हैं, जो जाके उस जगह के ऊपर अब टारगेट ढूंढ के ही हिट करता है, अनमैन्ड कम्बैट एरिया, कम्बैट एरियल व्हीकल्स थे ना, तो काफी एडवांस मतलब जो थे, देन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो इस्तेमाल हुए थे। अब जब भी हुआ तो नेचुरली इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग कि एक पाकिस्तान से रिटेलिएशन भी होगा,
4: जी बिल्कुल, कुछ न कुछ तो प्रतिशोध लिया जाएगा,
5: हो गया होगा, एंड हुआ भी। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट पाकिस्तान ने जो है ड्रोन्स अटैक किए थे और आर्टिलरी फायर हुआ था एलसी के ऊपर, लेकिन उससे हमें इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हम ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड थे। एंड हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है मल्टीलेयर्ड है जो होता है, वो इट वाज वेरी इफेक्टिवली वाज एबल टू मतलब जो है जो ड्रोन्स थे उनके अटैक्स थे
4: उनके हमलों को
5: नाकाम कर पाया जो है। तो ये मतलब बहुत सक्सेसफुली रहा था।
4: और तो सर ये प्रणाली जो थी जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की है वो हमारी स्वदेशी प्रणाली है,
5: उसमें स्वदेशी भी है और उसमें इम्पोर्टेड भी है। उसके बाद जो है पाकिस्तान फर्दर लॉन्च्ड एयर अटैक्स जो उन्होंने किया था एयरफील्ड्स पे हमारे जो अटैक किया था, हाउएवर हमें कोई डैमेज नहीं रहा था। एंड उसके काउंटर के लिए 10th मई को फिर से जो है इंडियन एयरफोर्स ने बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जो है लॉन्च किए थे, है ना, जिसमें कि उनके पाकिस्तान के एयरफील्ड्स और उनके काफी वाइटल इंस्टॉलेशंस थे जिसको कि बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। ये जब हुआ है 10th को, देन पाकिस्तान प्रपोज्ड अ सीज़फायर, बिकॉज़ वो भी इस कंडीशन में नहीं था कि वो उसको
4: आगे बढ़ाए
5: ठीक है। एंड सी इंडियंस का जिससे जो इंडियन आर्म फोर्सेस या इंडियन गवर्नमेंट का राज जो है बिल्कुल एम बहुत क्लियर था कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर, वी डोंट वांट इट टू एस्केलेट टू अ वॉर, लेकिन एट द सेम टाइम हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं, जो ये कायरतापूर्ण आप जो हरकत कर रहे हैं, आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो टेररिस्ट आ रहे हैं क्योंकि उनके पास जो हथियार मिलते हैं जिस तरह से तैयारी के साथ आते हैं
4: साथ।
5: तो पता चलता है कि उनको किसी ने सिखाया है, उनको बताया है, उनको पूरी इंटेलिजेंस है, उनको इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपने आप नहीं कर सकते। आई मस्ट से सो इट वाज अ मेजर विक्ट्री एंड इट एक्चुअली डिस्प्लेड जो रिजोल्यूटनेस है हमारी गवर्नमेंट की, उनका डिटर्मिनेशन है कि भाई अगर ऐसा आप करेंगे तो हम भी आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस ऑपरेशन में अगर आप देखें तो टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय हुए, काफी जो की टेररिस्ट थे वो मारे गए। एंड हमने जो एक आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है जो है कि क्रॉस बॉर्डर प्रिसिशन के साथ अटैक करने की कैपेबिलिटी, वो हमने दुनिया को दिखाई
4: बिल्कुल
5: कि हम ये कर सकते हैं। इट वाज ए वेरी कोहेसिव काइंड ऑफ ऑपरेशन जिसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, इसमें सिर्फ तीनों आर्म फोर्सेस ही नहीं इन्वॉल्व थी, और भी जो पुलिस फोर्सेस थी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, तो काफी लेवल पे जो है, तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इन दैट आल्सो कि इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल जॉइंट ऑपरेशन, ठीक है। एंड एक तरह से मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो पहलगाम में हुआ वहाँ पे और जो वहाँ पे शहीद हुए, जो
4: पर्यटक थे
5: जी, शायद कहीं ना कहीं उनकी भी आत्मा को शांति मिली होगी।
4: जी बिल्कुल सर।
5: उनके परिवार वालों को भी एक तो
4: जी
5: महसूस हुआ होगी कि कोई उनके साथ खड़ा है।
4: तो सर आपने अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया वो तो अभी बिल्कुल वर्तमान की घटना है समझ लीजिए, क्या ऐसे ऑपरेशंस भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा और भी किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में?
5: बिल्कुल, अगर हम पीछे जाते हैं
4: जी
5: मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में हमने जो है उग्रवादी हैं उनके अगेंस्ट म्यांमार में ऑपरेशन किया था।
4: अच्छा।
5: नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स जो हैं
4: जी
5: जहाँ पे कि काफी समय से जो है इंसर्जेंट एक्टिविटी,
4: हाँ जी, उग्रवादी समस्या रही है
5: और चल रही है।
4: जी जी।
5: तो ऐसे ही क्या हुआ था कि 4 जून को एक उग्रवादी संस्था है,
4: अच्छा,
5: उन्होंने चंडेल डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर के एक एम्बुश किया था,
4: अच्छा,
5: जिसमें कि एक इन्फेंट्री बटालियन के 18 सोल्जर्स मारे गए थे। एंड ये एम्बुश करने के बाद जो है ये लोग म्यांमार की तरफ चले गए थे क्योंकि म्यांमार में इनके पास जो है सेफ हेवन्स थे, वहां पे इनके हाइड आउट थे
4: जी।
5: तो उस समय एक ऑपरेशन जो है हम किया गया था जिसमें कि आर्मी ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन लॉन्च किया था।
4: अच्छा,
5: ठीक है। अगेन इट वाज कोऑर्डिनेटेड एट वेरी हाई लेवल, अगेन इट वाज अ डिसीजन वाज टेकन कि ओके वेदर दे आर इन म्यांमार, मतलब वो दूसरी कंट्री में हैं, फिर भी लेकिन हम जाएंगे और उनको एक जो है सबक जरूर सिखा के आएंगे।
4: तो सर यहाँ पर मैं एक प्रश्न ही आता है कि जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो क्या हम वहाँ की सरकार को इसके बारे में सूचित करते हैं?
5: बिल्कुल करते हैं, जैसे अगर वो फ्रेंडली कंट्री है तो डेफिनेटली जो है हम बिल्कुल किसी तरह की गलतफहमी नहीं रहने देना चाहते हैं। इसीलिए वही कारण है कि कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है एट हायर लेवल जो है। तो इसमें जो है ईस्टर्न थिएटर में हमारी जो एलिट स्पेशल फोर्सेस हैं उनके जो है 70 कमांडोस थे,
4: अच्छा,
5: जो कि गए और सरप्राइज मेंटेन करने के लिए इन्होंने जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से जो है ये पूरा पैदल गए थे।
4: अच्छा, सर मैंने सुना 50 किलोमीटर के आसपास था।
5: हाँ, उतना था, 20 से 30 किलोमीटर के करीब। अच्छा, जो लोग गए
4: जी, जी,
5: था जो कैंप हाइडआउट्स थे। एंड सिंस मैं वहां रहा हूँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो इट इज नॉट सो इजी कि रात के अंधेरे में आप जो है दूसरी जगह जा रहे हैं जंगल के बीच में से जहाँ आपको रास्ते नहीं पता है, आपको ये किसी तरह का और सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, बट यू नो कि यहाँ पे हमने करना है। तो इसमें 3 तरह के होते हैं, एक तो इन्फिल्ट्रेशन होता है अंदर जाना, ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूशन होता है ऑपरेशन करना, तीसरा एक्सफिल्ट्रेट करना होता है
4: वापस आना।
5: जी, तो ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं बहुत ही सक्सेसफुली

0: जी सर,
1: उरी अटैक में भी अगेन जो है 18 सितंबर को जो टेररिस्ट हैं, चार टेररिस्ट ने उरी में हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उसमें 19 सोल्जर्स को मारा था। तो अगेन इसमें जो है गवर्नमेंट ने ना रिजॉल्व प्रॉपर किया था कि भाई हमको जो है इसका जवाब देना है। एंड इट वाज डिसाइडेड कि उस समय हमने डिसाइड किया कि जो काउंटर स्ट्राइक लॉन्च करेंगे अक्रॉस द एलओसी स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर, बेस्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो टेररिस्ट लोकेशन सी है। क्या होता है कि जो उस इलाके में अगर आप देखेंगे एलसी जो है वहां से जहां से भी ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो उसके पीछे इनके जो है बेसिस होते हैं,
0: बेस कैंप्स होते हैं,
1: बेस कैंप्स होते हैं, वहां से लॉन्च पैड्स बोलते हैं वो भी होते हैं जहां से लोग आते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो है अगेन हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है इन्होंने ये ऑपरेशन कैरी आउट किया था
0: जी।
1: और 28 सितंबर को
0: जी।
1: ये जो ऑपरेशन था मतलब इसकी खासियत ये थी कि एक बहुत बड़े स्केल पे था ये।
0: अच्छा,
1: मतलब इट वाज नॉट ए स्पेसिफिक जगह पे किया था, ऑलमोस्ट ओवर अ स्प्रेड ऑफ अराउंड 80-90 किलोमीटर के स्प्रेड में। तो काफी सारी जो टीम्स थी
0: जी अलग अलग भागों में बटे हुए
1: अलग अलग उसमें गई थी
0: जी जी।
1: एंड जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो टेररिस्ट कैंप्स थे
0: जी
1: उनको डिस्ट्रॉय किया था। और उसको करने के बाद जो है सक्सेसफुली दे केम बैक विदाउट एनी कैजुअल्टी,
0: एक ही रात के अंदर,
1: एक ही रात में जो आए थे ये लोग। एंड इट वॉज अगेन ए मेजर ब्लो टू द टेररिस्ट एंड द पाकिस्तान आर्मी। ये जो है मतलब जैसे हम बताना चाहते हैं कि मतलब सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस पहले से चले आ रहे थे, मतलब इन द सेंस पूर्वजी ये 2015 से शुरू हुआ था। म्यांमार के बाद जो है हमने नेक्स्ट, अगर आपको याद हो, उरी अटैक के बाद 2016 में किया था जिसका भी हमने जिक्र किया। एंड फिर 2019 में जब 14 फरवरी को पुलवामा में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें कि 40 हमारे बहादुर जवान सीआरपीएफ के मारे गए थे, शहीद हुए थे। ये जो हमारे 40 बहादुर जवान शहीद हुए थे उनका बदला लेने के लिए, और साथ में जो है अगेन मतलब इट वाज अ रिजॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट की जो है हमें मुंह तोड़ जवाब जरूर देना चाहिए। 26 फरवरी को इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट करी थी और ये जो है बाय एयरफोर्स हुई थी, एयरफोर्स ने अटैक किया था जिसमें कि बालाकोट में टेररिस्ट सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था उसको जो है सक्सेसफुली बर्बाद किया था, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बर्बाद हुआ था और उसके अलावा जो है काफी सारे टेररिस्ट मारे गए थे। मैं जिक्र करना चाहूंगा उस समय विंग कमांडर अभिनंदन जी का, वो इस ऑपरेशन में शामिल थे और उनका MiG-21 जो है वो शॉट डाउन हुआ था जिसमें वो सक्सेसफुली बेल आउट हुए थे। लेकिन जब वो नीचे मतलब जमीन पे जब उनके पैर लगे तो उन्हें पता चला कि वो पाकिस्तान में है। बट अगर आपको याद हो उनका चेहरा उस समय भी जो है मतलब कोई उनके चेहरे पर डर नहीं था, कुछ नहीं था, शिकन भी नहीं थी, और पाकिस्तानी उनसे लगातार पूछ रहे थे आप कौन है क्या है, तो जितना वो बता रहे थे मेरा नाम ये है, मेरा रैंक ये है, दैट्स ऑल एंड वंडरफुल मतलब जो है
0: ये तो सर प्रशिक्षण का कमाल है
1: बिल्कुल। और सच में इस बहादुर अफसर के लिए तो मतलब तारीफ ही निकलती है मुझसे। एंड ये देखिए उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट का कितना फर्म मतलब जो स्टांस था एंड डिप्लोमेटिकली कितना मतलब जो है एफर्ट्स थे कि विंग कमांडर अभिनंदन जी जो है दो दिन के बाद मतलब जो है ऑन 1st March मतलब ही केम बैक सेफ एंड साउंड टू इंडिया।
0: इतना दबाव बना कि उन्हें वापस उनको करना पड़ा,
1: करना पड़ा ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस का जिक्र किया है मैंने जो हुए हैं, इसके अलावा भी हैं
0: जी।
1: बट एक जो सब बातों से जो पता चलता है
0: जी,
1: कि जो हमारा गवर्नमेंट का स्टैंड है कि अगर आपने हमारे पे कुछ किया तो हम उसका जवाब जरूर देंगे, दैट इज अ मेजर थिंग व्हिच हैज कम आउट ऑफ दिस।
0: अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं,
1: छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। हम शांति प्रिय हैं ठीक है, जैसे आपने शुरू शुरू में बोला था
0: जी,
1: लेकिन जो है अगर आप हमारी शांति भंग करेंगे तो आपको उसका नतीजा जरूर भुगतना पड़ेगा। एंड आने वाले वक्त में भी अगर कुछ होता है तो आई एम वेरी श्योर कि वी विल ऑलवेज स्टैंड एंड विल अटैक देम, हम जो है किसी भी चीज का बदला जरूर लेंगे
0: जी। वो कहते हैं ना सर कि यदि सशक्त है सेना तो सुरक्षित है सीमा।
1: एग्जैक्टली, अरे वाह
0: जी। तो श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अपने आधारभूत ढांचे और मिलिट्री तकनीक को बेहद ही मजबूत नहीं किया, अपने इरादों को भी साफ किया है। उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही भारत का अब न्यू नॉर्मल है। आतंकवाद, उग्रवाद के नेटवर्क और उनके प्रायोजकों को स्पष्टता के साथ निशाना बनाकर इन ऑपरेशंस के माध्यम से भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि आतंकियों और उग्रवादियों को जवाब सीमाओं या कूटनीतिक जटिलताओं की परवाह किए बिना त्वरित और उचित तरीके से दिया जाएगा। यहाँ पर शेर है जो कि साहिर साहब का है, उसे कहना यहाँ पर बेहद ही लाजमी रहेगा। सर, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही।
1: बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने। This is what the policy is.
0: तो सर, इसी शेर के साथ आज हम इस कड़ी को यहीं पे विराम देते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू पूर्वा जी, एंड थैंक यू श्रोताओं। जय हिंद।
0: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। और मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। जानकारी दे रहे थे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत कर रही थी पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी www.ifrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

और अब जा। ये था हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम। ये था हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, एयरोस्पेस का क्या अर्थ है, हाल किस तरह से अनुसंधान, डिजाइन और विकास के माध्यम से भारत की वायु शक्ति को सशक्त बनाता है, एवियोनिक्स और MRO जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का क्या महत्व है और देश के युवा किस तरह विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का हिस्सा बन सकते हैं।
2: लेकिन हाल की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्माण से आगे बढ़कर हाल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों, विमान इंजनों, अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों और भविष्य की स्वदेशी तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: तो आइए श्रोताओं, देश के संस्थान की इस विशेष श्रृंखला विज्ञान से तकनीक की ओर, इसमें अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि हाल किस तरह भारत को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है दादू और रुचि का रोचक।

0: संवाद।
1: अरे रुचि बेटा कहाँ हो?
2: आई दादू।
1: अरे इधर आओ बेटा, जल्दी आओ।
2: आई दादू।
1: अरे अरे अरे, अरे धीमे धीमे धीमे बेटा, आराम से आओ, कहीं गिर मत जाना।
2: चिंता मत करिए दादू, मैं बिल्कुल संभल कर आई हूँ। और ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। मैंने वादा किया था ना कि अगली बातचीत में मैं आपको अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगी।
1: अरे वाह बेटा, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू बेटा।
2: अब मुझे जल्दी से बताइए कि आप आज क्या पढ़ रहे हैं?
1: बेटा अभी तो दिन शुरू हुआ है। आज अखबार में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल के बारे में कुछ रोचक लेख छपा है बेटा।
2: अच्छा।
1: हाँ
2: दादू, मुझे याद है आपने पिछली बार हाल के बहुत सारे रोचक तथ्यों के बारे में बताया था। आज ये बताइए कि आज क्या क्या नया जानने को मिलने वाला है दादू की प्यारी रुचि बिटिया को।
1: देखो बेटा, आज हम जानेंगे हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर ही नहीं बनाता, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और भविष्य की रक्षा तकनीकों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
2: अंतरिक्ष कार्यक्रम? यानी हाल और इसरो का भी कोई संबंध है दादाजी?
1: हाँ बिटिया, और बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। जब हम इसरो की सफलताओं की बात करते हैं तो उसके पीछे कई भारतीय संस्थानों का योगदान होता है, जिनमें हाल भी शामिल है।
2: वो कैसे दादू?
1: हाल रॉकेटों और उपग्रह प्रक्षेपण यानों के लिए अनेक महत्वपूर्ण संरचनात्मक भाग, ईंधन टैंक, यांत्रिक अवयव और विशेष तकनीकी उपकरण तैयार करता है बेटा। इनका उपयोग अंतरिक्ष अभियानों में किया जाता है।
2: वाह, यानी हाल का काम केवल आकाश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच अंतरिक्ष तक भी है।
1: बिल्कुल बेटा, जब कोई भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित होता है या कोई प्रक्षेपण यान सफलतापूर्वक उड़ान भरता है, तब उसके पीछे अनेक वैज्ञानिक संस्थानों की सामूहिक मेहनत होती है बेटा। हाल भी उस सफलता का एक महत्वपूर्ण भागीदार होता है।
2: ये तो बहुत ही कमाल की बात है दादू।
1: निश्चित रूप से कमाल की बात है बेटा, यही तो भारत की ताकत है। देश के विभिन्न संस्थान मिलकर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं।
2: दादू, आपने बताया था कि हाल अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी अपना योगदान देता है, तो वो किस तरह से भला?
1: अरे जरा ठहरो बिटिया, सब कुछ बताऊंगा, आराम से, थोड़ा क्रम से चलते हैं बेटा।
2: अच्छा ठीक है दादू।
1: तुम बहुत नटखट हो बेटा। सुनो बेटा, जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना तुम्हें कि किसी भी विमान का दिल होता है उसका इंजन। क्या बताया था?
2: कि किसी भी विमान का दिल होता है उसका इंजन।
1: हाँ, जैसे हमारे शरीर में हृदय रक्त का संचार करता है, वैसे ही इंजन विमान को शक्ति प्रदान करता है। यदि इंजन ना हो तो विमान उड़ ही नहीं सकता।
2: आपने बताया था कि हाल इंजन भी बनाता है।
1: हाँ बिटिया, हाल विभिन्न प्रकार के विमान और हेलीकॉप्टर इंजनों के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन का कार्य करता है बेटा। इसके साथ ही स्वदेशी इंजन तकनीक विकसित करने के प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: यानी केवल विमान ही नहीं, बल्कि उन्हें उड़ाने वाली शक्ति भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: यही तो स्वदेशी तकनीक की असली पहचान है। जब किसी देश के पास अपनी तकनीक, अपना अनुसंधान और अपनी निर्माण क्षमता होती है, तब वो दूसरे देशों पर कम निर्भर रहता है।
2: अच्छा दादू।
1: हाँ बेटा।
2: क्या हाल भविष्य के लिए भी नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है?
1: बिल्कुल कर रहा है बेटा, और यही तो सबसे रोमांचक बात है। हाल कई अत्याधुनिक परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है बेटा।
2: जैसे?
1: जैसे सबसे पहले है AMCA, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये भविष्य की पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होगा बेटा, जिसमें आधुनिक स्टील्थ तकनीक और उन्नत प्रणालियां होंगी।
2: क्या सच में दादू, स्टील्थ तकनीक और उन्नत प्रणालियां होंगी? इसका क्या मतलब है
1: बिटिया? स्टील्थ तकनीक ऐसी तकनीक होती है जिससे विमान दुश्मन के रडार पर बहुत कम दिखाई देता है या उसे पहचानना कठिन हो जाता है। विमान की विशेष बनावट, सामग्री और डिजाइन उसकी रडार पहचान को कम करने में मदद करते हैं।
2: यानी दुश्मन को उसकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
1: हाँ बेटा, इससे विमान अपनी जिम्मेदारियाँ अधिक सुरक्षित और प्रभावी ढंग से निभा सकता है।
2: और ये उन्नत प्रणालियाँ क्या होती हैं दादाजी?
1: उन्नत प्रणालियों में आधुनिक रडार, संचार उपकरण, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर, कंप्यूटर आधारित नियंत्रण प्रणालियाँ और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर पायलट को बेहतर जानकारी देते हैं और विमान की क्षमता को बढ़ाते रहते हैं।
2: यानी भविष्य के विमान केवल तेजी नहीं होंगे बल्कि अधिक बुद्धिमान और सुरक्षित भी होंगे।
1: बिल्कुल सही समझा बेटा तुमने। आधुनिक तकनीक का उद्देश्य केवल गति बढ़ाना नहीं है बल्कि सुरक्षा, सटीकता और कार्य कुशलता को भी बेहतर बनाना होता है।
2: वाओ दादाजी, कितना कूल है ये तो। और बताइए ना दादू उसके बारे में।
1: बेटा इसके अलावा हाल का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर परियोजना पर भी बेहतरीन कार्य चल रहा है। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो विमान वाहक पोतों से उड़ान भर सकेगा और भारतीय नौसेना की शक्ति को और बढ़ाएगा।
2: और IMRH ये क्या है दादू?
1: इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। क्या बोला मैंने?
2: इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर।
1: ये भविष्य का बहु उद्देशीय हेलीकॉप्टर होगा बेटा।
2: अच्छा।
1: जिसका उपयोग सैनिकों के परिवहन, राहत एवं बचाव कार्यों और विशेष अभियानों में किया जा सकेगा।
2: मतलब दादाजी, हाल केवल आज की नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी तैयारी कर रहा है।
1: बिल्कुल सही, शाबाश, सही समझा तुमने बेटा।
2: दादू, आजकल हम अक्सर आत्मनिर्भर भारत की बात सुनते हैं, इसमें हाल की क्या भूमिका है?
1: बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा इसकी। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल भारत में वस्तुएं बनाना नहीं होता बल्कि अपनी तकनीक, अपना अनुसंधान, अपने वैज्ञानिक और अपनी निर्माण क्षमता को विकसित करना भी होता है।
2: यानी जब हम अपने विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और रक्षा प्रणालियां स्वयं बनाएंगे तब हम और अधिक आत्मनिर्भर बन जाएंगे दादाजी।
1: हाँ, हाल इसी दिशा में निरंतर काम कर रहा है बेटा, और यही कारण है कि आज ये संस्था भारत की तकनीक क्षमता, नवाचार और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी है।
2: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली संस्था नहीं है बल्कि ये विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, भविष्य की रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत की एक अहम संस्था है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। हाल ने केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है बल्कि भविष्य की तकनीकों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया है। और यही कारण है कि ये संस्था भारत की वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जाती है।
2: और अब तो मुझे हाल के विमानों और हेलीकॉप्टरों के बारे में और भी जानने की उत्सुकता हो रही है दादाजी।
1: तो फिर तैयार हो जाओ बिटिया, क्योंकि अब हम जानेंगे हाल की उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में जिन्होंने भारत की वायु शक्ति को नई ऊंचाइयां दी बेटा।
2: ये तो मैं जानती हूँ कि अब आप मुझे क्या बताने वाले हैं दादाजी।
1: सच में?
2: यार।
1: अच्छा मेरी चुटकी जादूगर, बताओ मैं क्या बताने वाला हूँ अब आगे?
2: अब आप ये बताने वाले हैं कि हमारे स्वदेशी विमानों की स्टोरीज क्या होने वाली है।
1: हाँ। वाह, तुम तो सच में मन की बातें जानने लगी हो बेटा।
2: आखिर पोती किसकी हूँ?
1: अच्छा
2: चलिए दादाजी, अब बताइए भी।
1: हाँ बेटा सुनो, भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान HF-24 मरुत, आधुनिक हल्के लड़ाकू विमान तेजस, बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर ध्रुव, सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र और अत्याधुनिक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की प्रेरणादायक कहानी।
2: वाह दादू, उन भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टरों की कहानी जो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत, प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है।
1: बिल्कुल बिटिया, तुम ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाओगी कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्माण के पीछे वर्षों का अनुसंधान, हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के धैर्य और कई रातों की नींदों का अनुभव छिपा हुआ है।
2: दादू, क्या हर विमान की अपनी अलग विशेषता होती है?
1: हाँ बिटिया, बिल्कुल होती है। कोई विमान दुश्मन के विमानों का मुकाबला करने के लिए बनाया जाता है, तो कोई सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए, तो कोई कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए और सैनिकों को ले जाने के लिए। इसी तरह हर हेलीकॉप्टर भी अपनी विशेष भूमिका निभाता है।
2: यानी हाल ने समय समय पर देश की आवश्यकताओं के अनुसार नए विमान और हेलीकॉप्टर विकसित किए हैं।
1: हाँ बेटा, ये केवल विमानों और हेलीकॉप्टरों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास की कहानी भी है।
2: तो दादाजी, सबसे पहले हम किसके बारे में जानने वाले हैं?
1: हम शुरुआत करेंगे HF-24 मरुत के बारे में। बेटा, ये भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था। जब देश स्वतंत्रता के बाद अपनी तकनीकी क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, तब स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना एक बहुत बड़ा सपना माना जाता था।
2: और क्या वह सपना सच हुआ?
1: हाँ बेटा, अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने HF-24 मरुत का निर्माण किया। ये केवल एक विमान नहीं था बेटा, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि भारत भी उन्नत एयरोस्पेस तकनीक विकसित कर सकता है।
2: यानी मरुत ने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया।
1: बिल्कुल बनाया। मरुत ने भारत में विमान निर्माण की मजबूत नींव रखी बेटा।
2: और दादाजी, तेजस के बारे में मैं अक्सर समाचारों में सुनती हूँ।
1: तेजस भारत का आधुनिक हल्का लड़ाकू विमान है। इसे अत्याधुनिक तकनीकों से विकसित किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, उन्नत नियंत्रण प्रणालियां और आधुनिक युद्ध क्षमताएं हैं।
2: तो क्या ये पूरी तरह भारतीय तकनीक से बना है दादाजी?
1: तेजस भारत की स्वदेशी क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके विकास में देश के अनेक अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिकों और उद्योगों का योगदान रहा है।
2: तो दादाजी, तेजस केवल एक विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। वहीं अगर ध्रुव के बारे में बात करें तो ये एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है बेटा।
2: दादू, और क्या खास बात है ध्रुव की?
1: ध्रुव का उपयोग सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और नागरिक सेवाओं द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है बेटा।
2: कौन कौन से कार्य दादू?
1: सैनिकों का परिवहन, राहत एवं बचाव अभियान, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, पर्वतीय क्षेत्रों में आपूर्ति पहुंचाना और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य बेटा।
2: यानी एक ही हेलीकॉप्टर कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभा सकता है।
1: यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है बेटा। ध्रुव शक्ति और सुरक्षा का संगम है।
2: और रुद्र?
1: रुद्र ध्रुव हेलीकॉप्टर का सशस्त्र संस्करण है। इसमें आधुनिक हथियार प्रणालियां और निगरानी उपकरण लगाए गए हैं।
2: तो ये केवल उड़ान भरने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा अभियानों के लिए भी उपयोगी है।
1: बिल्कुल है बेटा। ये कठिन परिस्थितियों में भी सेना को प्रभावी सहायता प्रदान कर सकता है।
2: और प्रचंड का नाम तो दादाजी बहुत प्रभावशाली लगता है मुझे।
1: जैसा कि नाम से प्रचंड है क्योंकि बेटा इसकी क्षमताएं भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। प्रचंड एक आधुनिक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे विशेष रूप से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संचालन के लिए विकसित किया गया है।
2: यानी जहां सामान्य हेलीकॉप्टरों को कठिनाई हो सकती है, वहां भी ये काम कर सकता है।
1: हाँ, यही कारण है कि ये भारतीय सेनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा।
2: दादू, क्या हाल के बनाए विमान विदेशों में भी जाते हैं?
1: हाँ बेटा, हाल के हेलीकॉप्टर और विमान कई देशों तक पहुँचे हैं। इससे भारत की तकनीकी क्षमता का विश्व में सम्मान बढ़ा है।
2: दादू, इसका मतलब इन सभी उपलब्धियों का आत्मनिर्भर भारत से भी सीधा संबंध है।
1: बिल्कुल है बेटा। जब कोई देश अपने विमान, हेलीकॉप्टर, तकनीक और रक्षा प्रणालियां स्वयं विकसित करता है ना, तब उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं।
2: यानी हमें हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
1: स्वदेशी तकनीक न केवल सुरक्षा को मजबूत करती है बल्कि विज्ञान, उद्योग, रोजगार और अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है बेटा।
2: दादाजी, आप समझ में आया कि हाल की उपलब्धियाँ केवल तकनीकी उपलब्धियाँ नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की उपलब्धियाँ भी है।
1: सही कहा बेटा तुमने, इन उपलब्धियों के पीछे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों और कर्मचारियों का समर्पण छिपा हुआ है। क्योंकि जब सपनों को विज्ञान का साथ मिलता है तब जन्म लेती हैं नई उड़ाने।
2: और जब देश के वैज्ञानिक इंजीनियर मिलकर काम करते हैं ना, तब आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है।
1: सही कहा बेटा तुमने, विज्ञान अनुसंधान और नवाचार ही विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नींव है।
2: दादू, जब मैं तेजस या प्रचंड जैसे विमानों के बारे में सुनती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि इन्हें बनाना कितना कठिन होता होगा।
1: बहुत कठिन है बेटा, किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर का निर्माण केवल कारखाने में पुर्जे जोड़ देने भर का काम नहीं होता। इसके पीछे वर्षों का अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण और सुधार की बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है।
2: यानी पहले उसकी योजना बनाई जाती होगी दादाजी।
1: हाँ बेटा, सबसे पहले वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि विमान किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद इंजीनियर उसकी संरचना, वजन, गति, सुरक्षा और तकनीकी प्रणालियों का डिजाइन तैयार करते हैं।
2: और फिर से उड़ाया जाता होगा?
1: नहीं, उससे पहले कंप्यूटर सिमुलेशन, प्रयोगशाला परीक्षण और जमीन पर कई तरह की जांच की जाती है बेटा। जब सभी परीक्षण सफल हो जाते हैं तभी परीक्षण उड़ान की अनुमति मिलती है।
2: मतलब एक सफल उड़ान के पीछे वर्षों की तपस्या होती है।
1: हाँ बेटा, जब हम किसी विमान को आकाश में उड़ते देखते हैं तब हमें केवल उसका परिणाम दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और समर्पण होता है।
2: दादू, इन स्वदेशी विमानों और हेलीकॉप्टरों से हमारी सेनाओं को क्या लाभ होता है?
1: बहुत लाभ होता है बेटा, सबसे बड़ा लाभ है आत्मनिर्भरता। यदि हमारे पास अपनी तकनीक और अपने विमान हैं, तो आवश्यकता अनुसार उनमें सुधार और उन्नयन भी हम स्वयं कर सकते हैं।
2: यानी हमें हर छोटी बड़ी आवश्यकता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
1: हाँ बेटा, इसके साथ ही देश में अनुसंधान, उद्योग, रोजगार और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलता है। यही कारण है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा।
2: दादू, क्या आज के विद्यार्थी भी भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं?
1: क्यों नहीं बन सकते, यदि विद्यार्थी विज्ञान, गणित और तकनीक में रुचि रखें, जिज्ञासु बने रहें और निरंतर सीखते रहें, तो वे भी भविष्य में हाल DRDO, इसरो या अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में कार्य कर सकते हैं।
2: यानी आज की पढ़ाई कल देश की शक्ति बन सकती है दादाजी।
1: बिल्कुल, आज की कक्षा में बैठा कोई छात्र भविष्य में नया विमान डिजाइन कर सकता है बेटा, नया इंजन विकसित कर सकता है या ऐसी तकनीक बना सकता है जो देश की सुरक्षा को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दे।
2: वाह, अब तो मुझे भी लगने लगा है दादू कि विज्ञान केवल किताबों का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी माध्यम है।
1: और यही तो हमारी इस पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है बेटा।
2: हाँ दादू, आज हमने जाना कि हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली संस्था नहीं है बल्कि ये विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, भविष्य की रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
1: तो चलो रुचि बेटा, इसी बात पर मिलकर कहें जय हिंद। अच्छा, एक कप चाय और ले आओ।
2: अरे दादू, आप भी ना, बार बार चाय, रुकिए लेकर आती हूँ।
1: थैंक यू बेटा।
0: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे थे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की, जो है आकाश की शक्ति का निर्माण। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना
1: और मैं दीपक निमा।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस कार्यक्रम को स्वर दिया दीपक नेमा और भगवती सक्सेना ने।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद। आइए सुनते हैं सांस्कृतिक समाचारों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। भारत भवन के संगीत केंद्र अनहद की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कजरे झूला गायन महोत्सव के दूसरे दिन बुंदेलखंड के लोक गायक फूल सिंह मांडरे और शशि कुमार पांडे ने अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने वर्षा ऋतु की सांगीतिक परंपराओं को जीवंत करते हुए श्रोताओं को लोक संगीत की आत्मीय दुनिया से परिचय करवाया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय तथा मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के संयुक्त तत्वावधान में 20 से 25 जुलाई तक चल रहे ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम का शनिवार को समापन हो गया। इस कार्यक्रम में साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े विविध आयामों पर विचार रखे गए। नई तकनीक किस तरह सिनेमा साहित्य एवं पत्रकारिता को प्रभावित कर रही है उस पर भी विद्वत्जनों ने अपनी बात रखी। करुणाधाम आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय महायज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर शनिवार को शास्त्रीय नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां हुई, जिसके अंतर्गत भरतनाट्यम नृत्य के माध्यम से भवानी अष्टकम की प्रस्तुति हुई। ये था हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। आज की कड़ी क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल के जीवन पर केंद्रित है।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आपने ट्यून किया हुआ है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल और अजलाना के क्रांतिकारियों की। ब्रिटिश राज से मुक्ति पाने के लिए लगभग हर भारतीय के मन में जबरदस्त आक्रोश और जुनून था। स्वाधीनता आंदोलन में हर भारतीय ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और कौशलता द्वारा हर संभव सहयोग किया। कुछ स्वाधीनता आंदोलनकारियों ने लेखनी द्वारा भी जनमानस में देशभक्ति की भावना जागृत कर अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत की। विपिन चंद्र पाल ने अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए हुंकार भरी। वे राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ शिक्षक, पत्रकार, लेखक और अच्छे वक्ता भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति प्रथा और छुआछूत का खुलकर विरोध किया। इसके साथ ही वे नारी शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे। उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। स्वदेशी आंदोलन के कर्णधारों में से एक विपिन चंद्र पाल ने बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने बंगाल विभाजन के खिलाफ न केवल खुलकर आवाज उठाई, बल्कि अपने लेखों के माध्यम से एक तरह से आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल की यादें हम आगे भी आपसे बांटेंगे। उसके पहले राष्ट्र गौरव का गान।

श्रोताओं, विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर सन 1858 को सिलहट जिले के पोइल गांव में हुआ था। अब सिलहट बांग्लादेश में है। सामाजिक कुरीतियों का खुलकर विरोध करने वाले विपिन चंद्र पाल को इसके लिए अपने ही परिवार के आक्रोश का सामना करना पड़ा। वो समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह के समर्थक थे। उन्होंने कड़े विरोध के बावजूद उच्च जाति की एक विधवा से विवाह किया था। विपिन चंद्र पाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो शिक्षक और पत्रकार होने के साथ साथ एक कुशल वक्ता और लेखक भी थे। विपिन चंद्र पाल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी देशभक्तों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल की तिकड़ी का हिस्सा थे, जिन्होंने सन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलाया था। अध्ययन के शौकीन विपिन चंद्र पाल ने 22 साल की उम्र से ही एक साप्ताहिक पत्रिका परिदाशक का प्रकाशन शुरू किया था। तत्कालीन कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बंगाल पब्लिक ओपिनियन के संपादकीय स्टाफ में भी वे शामिल थे। श्री पाल 1887 से 88 तक लाहौर में ट्रिब्यून के संपादक भी रहे। सन 1901 से 1911 तक उन्होंने लंदन में निर्वासित जीवन जिया और अंग्रेजी साप्ताहिक स्वराज का प्रकाशन किया। विपिन चंद्र पाल बंगाल पुनर्जागरण के आधार स्तंभों में से एक थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर बंगाल विभाजन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत का कड़ा विरोध किया। विपिन चंद्र पाल के बारे में कहा जाता है कि वो और उनके दो करीबी सहयोगी लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक उग्र विचारधारा वाले थे। ये तीनों ही कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे और इस अवधारणा पर विश्वास करते थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे हम लेकर रहेंगे। विपिन चंद्र पाल मानते थे कि सामाजिक विकास पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वदेशी आंदोलन से बहुत पहले ही उन्होंने स्वदेशी पर जोर देना शुरू किया था, क्योंकि वो मानते थे कि स्वदेशी सामाजिक विकास में गहरा योगदान दे सकती है। पेशे से विपिन चंद्र पत्रकार थे और इसका उपयोग देशभक्ति की भावना फैलाने और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता के प्रसार के लिए किया करते थे। दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने महारानी विक्टोरिया की बायोग्राफी बांग्ला भाषा में प्रकाशित की थी। गर्म विचारों के लिए मशहूर इन नेताओं ने अपनी बात तत्कालीन विदेशी शासक तक पहुंचाने के लिए ऐसे कई तरीके अपनाए जो एकदम नए थे। इन तरीकों में ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि शामिल हैं। उन्होंने महसूस किया कि विदेशी उत्पादों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो रही है और यहाँ के लोगों का काम भी छिन रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गर्म धड़े के अभ्युदय को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे आंदोलन को एक नई दिशा मिली और इससे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी। वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक रहे पाल एक बड़े समाज सुधारक भी थे। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी और सन 1907 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा चलाए गए दमन के समय पाल इंग्लैंड गए। वो वहां क्रांतिकारी विचारधारा वाले इंडिया हाउस से जुड़ गए और स्वराज पत्रिका की शुरुआत की। मदनलाल ढींगरा द्वारा सन 1909 में कर्जन वाइली की हत्या कर दिए जाने के कारण उनकी इस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया और लंदन में उन्हें काफी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। इस घटना के बाद वो उग्र विचारधारा से अलग हो गए और स्वतंत्र देशों के संघ की परिकल्पना पेश की। वंदे मातरम राजद्रोह मामले में भी श्री अरविंदो के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने के कारण वो 6 महीने जेल में रहे। श्री पाल ने आजादी की लड़ाई के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाने और हड़ताल आदि आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विपिन चंद्र पाल सन 1922 में राजनीतिक जीवन से अलग हो गए। 20 मई सन 1932 में इस समाज सुधारक
और महान क्रांतिकारी के जीवन का दीपक बुझ गया। और श्रोताओं, अब चर्चा अजलाना के क्रांतिकारियों की। इस वर्ष मार्च और अप्रैल में अखबारों में दो ऐसी खबरें छपी जिसने अत्याचारों की घाव फिर से कुरेद दिए। मार्च में छपी खबर ये थी कि पंजाब के अजलाना के कुएं से 282 कंकाल निकाले गए जो 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के थे। अप्रैल में ये समाचार प्रकाशित हुए थे कि उनकी रक्त रंजित मिट्टी बैसाखी के दिन लाकर जलियांवाला बाग में डाल दी गई। क्या है अजलाना के शहीदों का ये अल्पज्ञात अध्याय, आइए जानें। अमृतसर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर फ्रेडरिक कूपर द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका टाइटल था द क्राइसिस इन पंजाब, इस किताब में कूपर ने लिखा था कि उसने 282 निशक्त स्वतंत्रता सेनानियों को कत्ल करवाकर एक कुएं में फेंकवा दिया था जिसे अजलाना के निवासी कलमा दखू यानी माल का कुआं कहते थे, लेकिन अब उसे शहीदों वाला खू यानी शहीदों का कुआं कहते हैं। बाद में इसी घटना का सांगोपांग वर्णन सुंदरलाल की किताब भारत में अंग्रेजी राज की तीसरी जिल्द में मिला। याद रहे कि सुंदरलाल की यह किताब सन 1930 के करीब प्रकाशित हुई थी जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों के संस्मरणों, सरकारी अभिलेखों और तत्कालीन शासकों के निजी पत्र व्यवहार के आधार पर सन 1857 के भीषण दमन के प्रामाणिक संदर्भ हैं। तब ब्रिटिश सरकार ने इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया था। सुंदरलाल ने अजलाना के शहीदों को लेकर जहां ब्रिटिश स्वीकारोक्तियों को आधार बनाया है, वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी बाबा जगत सिंह से प्राप्त सूचना का भी उपयोग किया गया है। इस घटना की चर्चा हम आगे भी करेंगे, पहले मां भारती का यशगान।

श्रोताओं, मेरठ में जैसे ही मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करके आजादी का बिगुल फूंका, त्यों ही सीमावर्ती पंजाब में भी बगावत हो गई। उस समय सर रॉबर्ट मोंटगोमरी पंजाब के जुडिशियल कमिश्नर थे और फ्रेडरिक कूपर उनका विश्वस्त अफसर था। मेरठ का समाचार और मंगल पांडे की शहादत सुनकर लाहौर के पास गिमामीर में तैनात 26वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने 30 जुलाई सन 1857 को एक अंग्रेज मेजर और एक जूनियर गोरे को गोली मार दी। फिर प्रकाश पांडे के नेतृत्व में, जो कि मंगल पांडे का संबंधी बताया जाता है, अमृतसर जिले के अजलाना की तरफ कूच किया, लेकिन एक बड़ी गोरी पलटन ने उन्हें बीच में ही घेर लिया, लिहाजा सभी लोग छावनी से निकलने में सफल हो गए। फिर ये सभी स्वतंत्रता सेनानी रावी नदी के किनारे किनारे अमृतसर की ओर बढ़ने लगे। ये लोग अजलाना तक पहुंच गए, जो वहां से मात्र 16 मील के फासले पर था। श्रोताओं, इसके बाद जो हुआ उसे कूपर की पुस्तक से उद्धृत किया जा रहा है। दिनांक 31 जुलाई सन 1857 को शाम करीब 4 बजे अजलाना के तहसीलदार तथा फ्रेडरिक कूपर की ये गवाही अत्यंत लोमहर्षक है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ सुंदरलाल ने अपनी प्रामाणिक तथा सुसंदर्भित पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज में लिखते समय सन 1920 से 30 की अवधि में इस विषय को लेकर काफी रिसर्च की। उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा थी कि आखिर अजलाना में उस गुंबद को कालियाचार बुर्ज और उस कुएं को कालियाचार खूह क्यों कहते हैं। उन्होंने जिन प्रत्यक्ष दर्शियों से बात की उनमें अजलाना के 91 वर्षीय बाबा जगत सिंह भी थे, जो सन 1857 में युवा थे। सुंदरलाल को उनसे फुलवारी नामक पत्रिका के संपादक झांकी हीरा सिंह ने मिलवाया था। सभी प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि जिन 66 विरोधियों को बुर्ज में बंद किया गया था उनमें से 45 लोग दम घुटने से मर गए थे। कूपर ने बसमती से लिखा था कि हमने ब्लैकमेल का बदला ले लिया था। कूपर तो विद्रोहियों का हिसाब लगा रहा था कि जब 282 विद्रोही गिरफ्तार किए गए और सिर्फ गोली से 237 को ही उड़ाया गया, तो शेष 45 की लाशें

से प्रचलित और कूपर की पुस्तक में दर्ज होने के बाद प्रमाणित थी, वही घटना फरवरी सन 2014 की खुदाई में उसी कुएं से 282 कंकाल निकलने के बाद सत्यापित भी हो गई। अजलाना के उस कुएं को इसीलिए काल का कुआं भी कहते हैं और अब इसे शहीदों वाला खू यानी शहीदों का कुआं कहा जाता है। अंग्रेजों ने 1857 में स्वाधीनता संग्राम को बड़ी बेदर्दी से कुचला था। जो लोग ब्रिटिश न्याय प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताते नहीं अघाते थे, उन्हीं लोगों ने हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बिना किसी न्यायिक व्यवस्था के नृशंसता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया। भारत के ऐसे वीर सपूतों को शत शत नमन।

0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल और अजलाना के क्रांतिकारियों की। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपने दोस्त को और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। आज की कड़ी क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल के जीवन पर केंद्रित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है मन की बात। मन की बात कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तुत करेंगे। बने रहे हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घास निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं
या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे
सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। दो कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिल परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में
यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका
रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। शिक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी
परफॉर्म करते रहे। कोक बोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी हर कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: नमस्कार दोस्तों,
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम में आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज हम इस कार्यक्रम का सप्तम भाग प्रसारित कर रहे हैं।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस पुष्प विन्यास में आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस सर्ग में जहां रण की गर्जना से पहले संकल्प की दीप्ति जन्म लेती है। श्रोताओं, रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की तपा भूमि से आगे बढ़ते हुए अब हम तृतीय सर्ग के द्वार पर हैं, जहां वनवास की अग्नि में तपे पांडव नव तेज के साथ लौटते हैं और विपत्ति से निखरा मानव साहस अपना स्वर पाता है। यहां शब्द शंखनाद नहीं, संकल्प की धधकती हुई शपथ है।
3: आइए श्रोताओं, अब प्रवेश करें रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में, जहां यह रथ अपने ज्वलंत अश्वों सहित इतिहास की सीमाएं लांघता हुआ हमें नई विभा, नए संघर्ष और नए उत्कर्ष की ओर ले चलेगा। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का भाग एक।
2: हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।
3: मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के आगे पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी के जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षु दंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोहे जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं।
2: रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का यह आरंभ हमें एक गहरे जीवन सत्य की ओर ले जाता है। अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हुई और पांडव वन से लौटे, पर यह मात्र लौटना नहीं था, ये रूपांतरण था। वे जैसे गए थे वैसे नहीं लौटे, वे तपे हुए, निखरे हुए और भीतर से और अधिक दीप्त होकर लौटे।
3: यहाँ एक गूढ़ दार्शनिक संदेश निहित है। विपत्ति दंड नहीं, अवसर है। वह हमारे व्यक्तित्व की छिपी शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। संघर्ष की अग्नि में ही मनुष्य अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानता है और उसी प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग।
2: वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर।
3: विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। श्रोताओं, तृतीय सर्ग के भाग दो में मानो दिनकर जी ने कहीं अपने ही जीवन के संघर्षों से उत्पन्न भावों को पांडवों की कहानी में उकेर दिया हो। जीवन जीना मानो पत्थर पर फूल उगाने की कोई कला जैसा होता है। जो पुरुष कर्मशील है उसे विपत्तियों से भयभीत नहीं होना चाहिए, और जो धीर है वह सुखों में डूबकर अपने लक्ष्य को नहीं भूलता।
2: श्रोताओं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, इन पंक्तियों में केवल पांडवों के लिए संदेश नहीं है, बल्कि ये भारत की युवा शक्ति के लिए एक कालजयी पुकार है। मानो कवि सीधे युवा हृदय से संवाद कर रहा हो और कह रहा हो, हे नवयुवक, तू कठिनाइयों से भागने के लिए नहीं जन्मा, तू उन्हें परास्त करने के लिए जन्मा है। संघर्ष तेरी बाधा नहीं, तेरी निर्माण भूमि है। विपत्ति तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। यदि तू आराम में डूबा रहेगा तो सो जाएगा, पर यदि तू संघर्ष को अपनाएगा तो जाग जाएगा। तेरी नसों में केवल रक्त नहीं, ऊर्जा स्वप्न और परिवर्तन की शक्ति बह रही है। समय उसी का साथ देता है जो साहस करता है, इसलिए उठ, अपने भीतर की अग्नि को पहचान, विपत्तियों पर छा जा और अपने पुरुषार्थ से अपना ही नहीं युग का भाग्य लिख दे।
3: श्रोताओं, हमें अब उस रथ की आवाज सुनाई दे रही है जिसके रथ से संसार के मनोरथ जुड़ते हैं, जिसके रथ के पहिए पहिए न होकर हम सभी के काल चक्र की ओर घूमते हुए हमारे जीवन और हमारी मृत्यु का विधान तय करते हैं। आइए उसी रथ के साथ तृतीय सर्ग के भाग तीन में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं इस तृतीय सर्ग का भाग तीन। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कृष्ण कहते हैं,
2: दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे।
3: दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
2: जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र, शत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र।
3: श्रोताओं, अभी आपने तृतीय सर्ग का ये भाग सुना। कथा महाभारत से ली गई है, पर दृष्टि दिनकर जी की है। यही तो विशेषता है रश्मि रथी की, कि ये केवल अतीत का आख्या नहीं, यह वर्तमान का मार्गदर्शन है। जीवन में शांति मार्ग सदैव श्रेष्ठ होता है। कृष्ण पहले दूत बनकर आते हैं, शस्त्र लेकर नहीं। ये हमें सिखाता है कि संवाद युद्ध से बड़ा होता है। अब समस्या ये है कि हमारा अहंकार उन्हें पहचान नहीं पाता। जब तक हम अपने भीतर के दुर्योधन को नहीं पहचानेंगे, तब तक विराट सत्य सामने होते हुए भी हम अंधे ही रहेंगे। दिनकर जी की कलम हमें झकझोरती है। यह काव्य केवल सुनने के लिए नहीं, आत्ममंथन के लिए है। आइए अब प्रवेश करें उस क्षण में जहां मनुष्य ईश्वर को बांधने चलता है और उत्तर में ईश्वर ब्रह्मांड का पट खोल देते हैं। सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 4 का काव्य पाठ। इसे श्री कृष्ण की चेतावनी के नाम से भी सुनते और जानते हैं।
2: शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट विष्णु जलपति धनेश, शतकोट रुद्र शतकोट काल, शतकोट दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, पर मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
3: थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
2: श्रोताओं, दिनकर जी की अमर कृति रश्मि रथी हमें केवल महाभारत की कथा नहीं सुनाती, वो हमारे भीतर के कुरुक्षेत्र को उजागर करती है। अतः आइए इस प्रसंग से ये सीख लेकर आगे बढ़ें कि शांति का मार्ग ही श्रेष्ठ है, विनम्रता ही बल है, और आत्मचिंतन ही वो दीप है जो हमें विनाश से बचा सकता है।
3: आइए सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 5 का काव्य पाठ। भगवान सभा को छोड़ चले, कर के रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा,
2: हाय हम शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वी तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं और क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू मानी, तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहार, पांडव से लड़ने हो तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। हा हा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, हसली स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुटमान सिंहासन ले ले, बस बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके।
3: श्रोताओं अभी आपने कृष्ण की वाणी सुनी, वह वाणी जो केवल शब्द नहीं करुणा का समुद्र है, केवल तर्क नहीं समय की अंतिम पुकार है। वे कर्ण को समझा रहे हैं, पर वस्तुतः मनुष्य के भीतर बैठे उस द्वंद को संबोधित कर रहे हैं, जहां कर्तव्य और कृतज्ञता, जन्म और पालन, सत्य और संबंध आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कृष्ण जैसे कोई दीपक लेकर अंधेरी सुरंग में उतर आए हों, वे कर्ण को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा,
2: हे कृष्ण, बड़ी ये माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं, ग्लानि व्यथा मैं ध्यान जन्म का धरता हूं।

0: अधिक कुछ भी कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण। जिस माँ ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, मां का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर? नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ? कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय? ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है? मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको? हे कृष्ण, जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, दोनों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमा पान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, राधा ने मां का कर्म किया।
1: श्रोताओं, कर्ण के शब्दों में अभी आपने केवल आक्रोश को नहीं सुना, एक ऐसे पुत्र का रिश्ता हुआ हृदय सुना है, जिसे जन्म तो मिला पर अपनापन नहीं मिला। यह संवाद तीर की तरह बाहर नहीं आता, भीतर धसता चला जाता है। कर्ण आज प्रश्न कर रहा है, पर यह प्रश्न केवल कुंती से नहीं है, ये उस समाज से भी है जो समय देखकर रिश्तों की चादर ओढ़ता और उतारता है। सच ही कहा गया है श्रोताओं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जिस बालक ने जन्म से ही तिरस्कार की धूप सही हो, वो अचानक मिले स्नेह पर सहज कैसे विश्वास कर ले?
2: और देखिए ना,

0: कर्ण की वेदना केवल मातृत्व के अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है, उसके भीतर वर्षों का अपमान अंगार बनकर धधक रहा है। वह पूछ रहा है, जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराता था, तब किसने मेरा हाथ थामा था? कौन मेरे आंसुओं पर मरहम रखता था? यही कारण है कि उसका मन आज जन्म से अधिक पालन को सत्य मानता है। श्रोताओं, लोक में कहा जाता है कि जिसने दुख की धूप में साथ दिया वही अपना कहलाया। कर्ण के लिए राधा केवल पालक माता नहीं, उसकी आत्मा का आश्रय है।
1: दोस्तों, दिनकर जी यहां केवल कर्ण की कथा नहीं लिखते, वे मनुष्य के भीतर के उस खालीपन को शब्द देते हैं जहां अपनापन और उपेक्षा आमने सामने खड़े होते हैं। कृष्ण उसे उसके जन्म का सत्य दिखा रहे हैं, पर कर्ण जीवन का सत्य सामने रख रहा है। यही इस प्रसंग की महत्ता है। यहां धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, संबंधों की कसौटी पर भी परखा जा रहा है।
0: श्रोताओं, अभी कर्ण का मन पूरी तरह खुला नहीं है। उसके हृदय में वर्षों से दबा हुआ लावा अभी और फूटना बाकी है। उसकी वाणी में अभी भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो समय के सीने पर चोट करने वाले हैं। अगले भाग में कर्ण अपने जीवन, अपनी मित्रता, अपने अपमान और अपने धर्म का ऐसा पक्ष रखेगा जहां करुणा और प्रतिज्ञा एक साथ दिखाई देंगी। अगले अंक में सुनेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के अंतर मन का वह ज्वालामुखी जो अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से फटने को है। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर यह विदा केवल एक विराम है, इस काव्य यात्रा का अंत नहीं। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का, वाचन स्वर मैं भगवती सक्सेना,
2: मैं संदीप शर्मा
3: और मैं दीपक नेमा।
0: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा,
4: नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी अक्षय निधि कार्यक्रम के साथ। अक्षय निधि कार्यक्रम में आप वैदिक ऋचाएं सुनते हैं। शाम 5:10 पर सुने भक्ति संगीत। शाम 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम आज केंद्रित होगा आजाद हिंद फौज की सिपाही नीरा आर्य के जीवन पर। शाम 6:30 पर कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें आज का विषय होगा भाषा की मर्यादा। शाम 7 बजे करगिल विजय दिवस पर विशेष कार्यक्रम। 7:30 पर हमारी सेना हमारा गर्व कार्यक्रम में आज का विषय होगा सर्जिकल स्ट्राइक। रात्रि के 8 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर जानकारी देंगे। रात्रि के 8:30 पर कार्यक्रम याद करो कुर्बानी, आज की कड़ी क्रांतिकारी बिपिन चंद्रपाल के जीवन पर केंद्रित होगी। रात्रि के 9 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा। और 9:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी सांध्यकालीन सेवा आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से सांगीतिक प्रस्तुतियां सुनते रहें।
6: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 MHz पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का।

निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। यहाँ का जनजीवन कला और संस्कृति से संपन्न है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से घिरा यह अंचल नर्मदा नदी का पावन तट पाकर यहाँ के जनजीवन को आनंद विभोर करता रहता है। तो अब बिना देर किए आनंद लेते हैं निमाणी लोक गायन का। कलाकार हैं शिव गुप्ता और उनके साथी।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: एक प्रस्तुत है संत सिंगाजी निमाड़ के, संत निर्गुणी पंथ के संत के विचारों को निमाड़ी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास।

0: निमाड़ के धरातल का वृत्तांत। एक बेटी अपने पिताजी को बोलती, पिताजी आपने कहा मेरी शादी कर दी। तो एक कल्पना है,
1: अरे कहा दे दी रे दादा,

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं,

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आज़ादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

निमाड़ का सबसे फेमस गीत लोकगीत, जब भाभी के घर ननंद जाती है तो भाभी अपने बच्चे घर, जब बच्चा होता है निमाड़ में, तो कुछ खिलौना लेके जाती है

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: शबरी को मतंग ऋषि ने कहा था कि तेरे आंगन में राम आएंगे। शबरी ने इंतजार किया कि मेरे राम मेरे आंगन में आएंगे, प्रभु का इंतजार किया।
1: अरे हम बूढ़ी हुई गई रे, वाट देखत देखत
0: ए राम कब आओगे।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: एक लड़का लड़की आपस में बात कर शादी का पहला, उनकी कल्पना कवि की है।

0: जी।
1: आज कार्यक्रम भारत भारती में आप आनंद ले रहे थे निमाणी लोक गायन का, जिसे प्रस्तुत किया शिव गुप्ता और उनके साथियों ने। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
3: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रही हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ज्वालामुखी।

डिग्री लेने के बाद मैं नित्य लाइब्रेरी जाया करता था, पत्रों या किताबों का अवलोकन करने के लिए नहीं। किताबों को तो मैंने ना छूने की कसम खा ली थी। जिस दिन गजट में अपना नाम देखा उसी दिन

चेयरमैन, मिस्त्री, खानसामा या बावर्ची होता तो मुझे इतने दिनों तक बेकार ना बैठना पड़ता। एक दिन मैं चारपाई पर लेटा हुआ एक पत्र पढ़ रहा था कि मुझे एक मांग अपनी इच्छा के अनुसार दिखाई दी। किसी रईस को एक ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत थी जो विद्वान, रसिक, सहृदय और रूपवान हो। वेतन 1,000 मासिक। मैं उछल पड़ा, कहीं मेरा भाग्य उदय हो जाता और ये पद मुझे मिल जाता तो जिंदगी चैन से कट जाती। उसी दिन मैंने अपना विनय पत्र अपने फोटो के साथ रवाना कर दिया, पर अपने आत्मीय गणों में से किसी से इसका जिक्र न किया कि कहीं लोग मेरी हंसी न उड़ाएं। मेरे लिए 30 रुपए मासिक भी बहुत थे, 1,000 कौन देगा। पर दिल से यह ख्याल दूर न होता, बैठे बैठे शेख चिल्ली के मंसूबे बांधा करता। फिर होश में आकर अपने आप को समझाता कि मुझमें ऐसे ऊंचे पद के लिए कौन सी योग्यता है। मैं अभी कॉलेज से निकला हुआ पुस्तकों का पुतला हूं, दुनिया से बेखबर। इस पद के लिए एक से एक विद्वान, अनुभवी पुरुष मुंह फुलाए बैठे होंगे, मेरे लिए कोई आशा नहीं। मैं रूपवान सही, सजीला सही, मगर पदों के लिए रूपवान होना काफी नहीं होता। विज्ञापन में इसकी चर्चा करने से केवल इतना अभिप्राय होगा कि कुरूप आदमी की जरूरत नहीं, और ये उचित भी है, बल्कि बहुत सजीलापन तो ऊंचे पदों के लिए कुछ शोभा नहीं देता। मध्यम श्रेणी का तोंद, भरा हुआ शरीर, फूले हुए गाल और गौरवयुक्त वाक्य शैली, ये उच्च पदाधिकारियों के लक्षण हैं और मुझे इनमें से एक भी मयस्सर नहीं है। इसी आशा और भय में एक सप्ताह गुजर गया और मैं निराश हो गया। मैं भी कैसा ऊंचा हूं कि एक बेसिर पैर की बात के पीछे ऐसा फूल उठा, इसी को बड़कपन कहते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, किसी दिल्लगीबाज ने आज के शिक्षित समाज की मूर्खता की परीक्षा करने के लिए ये स्वांग रचा है। मुझे इतना भी न सूझा, मगर 8वें दिन प्रातःकाल तार के चपरासी ने मुझे आवाज दी। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी, लपका हुआ आया, तार खोल कर देखा, लिखा था, स्वीकार है, शीघ्र आओ ऐशगढ़। मगर यह सुख संवाद पाकर मुझे वो आनंद न हुआ जिसकी आशा थी। मैं कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा, किसी तरह विश्वास न आता था, जरूर किसी दिल लगीबाज की शरारत है, मगर कोई मुजायका नहीं, मुझे भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तार दे दूं कि 1 महीने की तनख्वाह भेज दो, आप ही सारी कलई खुल जाएगी। मगर फिर विचार किया, कहीं वास्तव में नसीब जागा हो तो दंडता से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलो दिल लगी ही सही, जीवन में ये घटना भी स्मरणीय रहेगी, इस तिलिस्म को खोल ही डालूं। ये निश्चय करके तार द्वारा आने की सूचना दे दी और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पूछने पर मालूम हुआ कि वो स्थान दक्षिण की ओर है। टाइम टेबल में उसका वृत्तांत विस्तार के साथ लिखा हुआ था, स्थान अति रमणीय है पर जलवायु स्वास्थ्यकर नहीं। हाँ, हष्ट पुष्ट नवयुवकों पर उसका असर शीघ्र नहीं होता। दृश्य बहुत मनोहर है पर जहरीले जानवर बहुत मिलते हैं, यथा साध्य अंधेरी घाटियों में न जाना चाहिए। ये वृत्तांत पढ़कर उत्सुकता और भी बढ़ी। जहरीले जानवर हैं तो हुआ करें, कहां नहीं है। मैं अंधेरी घाटियों के पास भूलकर भी न जाऊंगा। आकर सफर का सामान ठीक किया और ईश्वर का नाम लेकर नियत समय पर स्टेशन की तरफ चला, पर अपने अलापी मित्रों से इसका कुछ जिक्र ना किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि 2 ही 4 दिन में फिर अपना सा मुंह लेकर लौटना पड़ेगा। गाड़ी पर बैठा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तो सिगार और पत्रों में दिल बहलाता रहा, फिर मालूम नहीं कब नींद आ गई। आंखें खुली और खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो उषाकाल का मनोहर दृश्य दिखाई दिया। दोनों ओर हरे वृक्षों से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां, उन पर चरती हुई उजली उजली गाय और भेड़ें, सूर्य की सुनहरी किरणों में रंगी हुई बहुत सुंदर मालूम होती थी। जी चाहता था कि कहीं मेरी कुटिया भी इन्हीं सुखद पहाड़ियों में होती, जंगल के फल खाता, झरनों का ताजा पानी पीता और आनंद के गीत गाता। यकायक दृश्य बदला, एक विस्तृत झील दिखाई दी जिसमें कमल खिले हुए थे, कहीं उजले उजले पक्षी तैरते थे और कहीं छोटी छोटी डोंगियां निर्बल आत्माओं के सदृश डगमगाती चली जाती थी। ये दृश्य भी बदला, पहाड़ियों के दामन में एक गांव नजर आया, झाड़ियों और वृक्षों से ढका हुआ, मानो शांति और संतोष ने यहां अपना निवास स्थान बनाया हो। कहीं बच्चे खेलते थे, कहीं गायों के बछड़े किलोल करते थे। फिर एक घना जंगल मिला, झुंड के झुंड हिरन दिखाई दिए जो गाड़ी की हाहाकार सुनते ही चौकड़ियां भरते दूर भाग जाते थे। ये सब दृश्य स्वप्न के चित्रों के समान आंखों के सामने आते थे और एक क्षण में गायब हो जाते थे। उनमें एक अवर्णनीय शांतिदायिनी शोभा थी जिससे दृश्य में आकांक्षाओं के आवेग उठने लगते थे।

आखिर ऐशगढ़ निकट आया। मैंने बिस्तर संभाला, जरा देर में सिग्नल दिखाई दिया। मेरी छाती धड़कने लगी, गाड़ी रुकी। मैंने उतरकर इधर उधर देखा, कुलियों को पुकारने लगा। कितने में दो वर्दी पहने हुए आदमियों ने आकर मुझे सादर सलाम किया और पूछा, आप वहां से आ रहे हैं ना, चलिए मोटर तैयार है। मेरी बांछें खिल गईं। अब तक कभी मोटर पर बैठने का सौभाग्य ना हुआ था। शान के साथ जा बैठा। मन में बहुत लज्जित था कि ऐसे फटे हाल में क्यों आया। अगर जानता कि सचमुच सौभाग्य सूर्य चमका है तो ठाट बाट से आता। खैर, मोटर चली। दोनों तरफ मौलसरी के सघन वृक्ष थे। सड़क पर लाल बजरी बिछी हुई थी। सड़क हरे भरे मैदान में किसी सुरम्य जलधारा के सदृश बल खाती चली गई थी। 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि सामने एक शांतिमय सागर दिखाई दिया। सागर के उस पार पर एक विशाल भवन बना हुआ था। भवन अभिमान से सिर उठाए हुए था। सागर संतोष से नीचे लेटा हुआ। सारा दृश्य काव्य श्रृंगार और आमोद से भरा हुआ था। हम सदर दरवाजे पर पहुंचे। कई आदमियों ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। इनमें से एक शौकीन मुंशी जी थे, जो बाल संवारे आंखों में सुरमा लगाए हुए थे। मेरे लिए जो कमरा सजाया गया था उसके द्वार पर मुझे पहुंचाकर बोले, सरकार ने फरमाया है इस समय आप आराम करें, संध्या समय मुलाकात कीजिएगा। मुझे अब तक इसकी कुछ खबर न थी कि यह सरकार कौन है। न मुझे किसी से पूछने का साहस हुआ, क्योंकि अपने स्वामी के नाम से अनभिज्ञ होने का परिचय नहीं देना चाहता था। मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा स्वामी बड़ा सज्जन मनुष्य था। मुझे इतने आदर सत्कार की कदापि आशा न थी। अपने सुसज्जित कमरे में जाकर जब मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा तो हर्ष से विह्वल हो गया। पहाड़ियों की तरफ से शीतल वायु के मंद मंद झोंके आ रहे थे। सामने छज्जा था, नीचे झील थी, और मैं, जिसे भाग्य देवी ने सदैव अपना सौतेला लड़का समझा था, इस समय जीवन में पहली बार निर्विघ्न आनंद का सुख उठा रहा था। तीसरे पहर उन्हीं शौकीन मुंशी जी ने आकर इत्तला दी कि सरकार ने याद किया है। मैंने इस बीच में बाल बना लिए थे, तुरंत अपना सर्वोत्तम सूट पहना और मुंशी जी के साथ सरकार की सेवा में चला। उस समय मेरे मन में ये शंका उठ रही थी कि कहीं मेरी बातचीत से स्वामी असंतुष्ट ना हो जाएं और उन्होंने मेरे विषय में जो विचार स्थिर किए हों उनमें कोई अंतर ना पड़ जाए। तथापि मैं अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए खूब तैयार था। हम कई बरामदों से होते हुए अंत में सरकार के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। मुंशी जी ने पर्दा उठाकर मुझे इशारे से बुलाया। मैंने कांपते हुए हृदय से कमरे में कदम रखा और आश्चर्य से चकित हो गया। मेरे सामने सौंदर्य की ज्वाला दीप्तिमान थी। फूल भी सुंदर है और दीपक भी सुंदर है। फूल में ठंडक है और सुगंध है, दीपक में प्रकाश और उद्दीपन। फूल पर भ्रमर उड़ उड़कर उसका रस लेता है, दीपक पर पतंगा जलकर राख हो जाता है। मेरे सामने कारचोबी मसनत पर जो सुंदरी विराजमान थी वो सौंदर्य की प्रकाशमय ज्वाला थी। फूल की पंखुड़ियां हो सकती हैं, ज्वाला को विभक्त करना संभव है। उसके एक एक अंग की प्रशंसा करना ज्वाला को काटना है। वो नख शिख तक एक ज्वाला थी, वही दीपन, वही चमक, वही लालिमा, वही प्रभा। कोई चित्रकार प्रतिभा सौंदर्य का इससे अच्छा चित्र नहीं खींच सकता था। रमणी ने मेरी तरफ वात्सल्य दृष्टि से देखकर कहा, आपको सफर में कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने संभल कर उत्तर दिया, जी नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। यह स्थान पसंद आया? मैंने साहसपूर्ण उत्साह के साथ जवाब दिया, ऐसा सुंदर स्थान पृथ्वी पर ना होगा। हां, गाइडबुक देखने से विदित हुआ कि यहां की जलवायु जैसी सुखद प्रतीत होती है यथार्थ में वैसी नहीं। विषैले पशुओं की भी शिकायत थी। यह सुनते ही रमणी का मुख सूर्य कांतिहीन हो गया। मैंने तो यह चर्चा इसलिए कर दी थी कि जिससे प्रकट हो जाए कि यहां मुझे आने में कुछ त्याग करना पड़ा है, पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि चर्चा से उसे कोई विशेष दुख हुआ। पर क्षण भर में सूर्य मेघमंडल से बाहर आया और बोली, यह स्थान अपनी रमणीयता के कारण बहुधा लोगों की आंखों में खटकता है। गुण का निरादर करने वाले सभी होते हैं, और यदि जलवायु कुछ हानिकर हो भी तो आप जैसे मनुष्य को इसकी क्या चिंता हो सकती है? रहे विषैले जीव जंतु तो वह आपके

कितने एमए थे और कोई डीएससी था या कोई जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हुए था। मानो मुझे यहाँ किसी दार्शनिक विषय की जांच करानी थी। मुझे अब की ये अनुभव हुआ कि देश में उच्च शिक्षित मनुष्यों की इतनी भरमार है। कई महाशयों ने स्वरचित ग्रंथों की नामावली लिखी थी, मानो देश में लेखकों और पंडितों की ही आवश्यकता है। कालगति का लेशमात्र भी परिचय नहीं है। प्राचीन कर्म कथाएं अब केवल अंध भक्तों के रसास्वादन के लिए ही हैं और उनसे कोई लाभ नहीं है। यह भौतिक उन्नति का समय है। आजकल लोग भौतिक सुख पर अपने प्राण अर्पण कर देते हैं। कितने ही लोगों ने अपने चित्र भी भेजे थे, कैसी कैसी विचित्र मूर्तियां थीं जिन्हें देखकर घंटों हंसी। मैंने उन सभी को एक एल्बम में लगा दिया है और अवकाश मिलने पर जब हंसने की इच्छा होती है तो उन्हें देखा करती हूँ। मैं उस विद्या को रोग समझती हूँ जो मनुष्य को वनमानुष बना दे। आपका चित्र देखते ही आंखें मुग्ध हो गईं, तत्क्षण आपको बुलाने को तार दे दिया। मालूम नहीं क्यों अपने गुण स्वभाव की प्रशंसा की अपेक्षा हम अपने बाह्य गुणों की प्रशंसा से अधिक संतुष्ट होते हैं। और एक सुंदरी के मुखकंठ से वो चलते हुए जादू के समान है। मैं कह उठा, यथा साध्य आपको मुझसे असंतुष्ट होने का अवसर ना मिलेगा। सुंदरी ने मेरी ओर प्रशंसापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, इसका मुझे पहले ही विश्वास है। आइए अब कुछ काम की बातें हो जाएं। इस घर को आप अपना ही समझिए और संकोच छोड़कर आनंद से रहिए। मेरे भक्तों की संख्या बहुत है, वो संसार के प्रत्येक भाग में उपस्थित हैं और बहुधा मुझसे अनेक प्रकार की जिज्ञासा किया करती हैं। उन सबको मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। आपको उनमें भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्य मिलेंगे। कोई मुझसे सहायता मांगता है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई सराहता है, कोई गालियां देता है। इन सब प्राणियों को संतुष्ट रखना आपका काम है। देखिए, ये आज के पत्रों का ढेर है। एक महाशय कहते हैं, बहुत दिन हुए आपकी प्रेरणा से मैं अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का अधिकारी बन बैठा था। अब उनका पुत्र वयस्क प्राप्त हो चुका है और मुझसे अपने पिता की जायदाद लौटाना चाहता है। इतने दिनों तक उस संपत्ति का उपयोग करने के पश्चात अब उसका हाथ से निकलना खर रहा है। आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? इनको उत्तर दीजिए कि इस कूटनीति से काम लो, अपने भतीजे को कपट प्रेम से मिला लो और जब वो निशंक हो जाए उससे एक सादे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करा लो। इसके पीछे पटवारी और अन्य कर्मचारियों की मदद से इसी स्टाम्प पर जायदाद का बेनामा लिखा लो। यदि एक लगाकर दो मिलते हो तो आगा पीछा मत करो। ये उत्तर सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ, नीति ज्ञान को धक्का सा लगा। सोचने लगा, ये रमणी कौन है और क्यों ऐसे अनर्थ का परामर्श देती है? ऐसे खुल्लम खुल्ला तो कोई वकील भी किसी को राय न देगा। उसकी ओर संदेहात्मक भाव से देखकर बोला, ये तो सर्वथा न्याय विरुद्ध प्रतीत होता है। कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, न्याय की भली कही आपने, ये केवल धर्मांध मनुष्यों के मन का समझौता है, संसार में इसका अस्तित्व नहीं। आप ऋण लेकर मर जाएं, लड़का कौड़ी कौड़ी भरे, विद्वान लोग इसे न्याय कहते हैं, मैं घोर अत्याचार समझती हूं। इस न्याय के पर्दे में गांठ के पूरे महाजन की हेकड़ी साफ झलक रही है। एक डाकू किसी भद्र पुरुष के घर में डाका मारता है, लोग उसे पकड़कर कैद कर देते हैं। धर्मात्मा लोग इसे भी न्याय कहते हैं, किंतु यहां भी वही धन और अधिकार की प्रचंडता है। भद्र पुरुष ने कितने ही घरों को लूटा, कितनों का गला दबाया और इस प्रकार संचय किया कि किसी को भी आंख दिखाने का साहस ना हुआ। डाकू ने जब उनका गला दबाया तो वो अपने धन और प्रभुत्व के बल से उस पर वज्र प्रहार कर बैठे। मैं इसे न्याय नहीं कहती। संसार में धन छल कपट धूर्तता का राज्य है, यही जीवन संग्राम है। यहां प्रत्येक साधन जिससे हमारा काम निकले, जिससे हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सकें, न्याय अनुकूल और उचित है। धर्म युद्ध के दिन अब नहीं रहे। ये देखिए, ये एक दूसरे सज्जन का पत्र है। वो कहते हैं, मैंने प्रथम श्रेणी में एमए पास किया, प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा पास की, पर अब कोई बात भी नहीं पूछता। अब तक ये आशा थी कि योग्यता और परिश्रम का अवश्य ही कुछ फल मिलेगा, पर 3 साल के अनुभव से ज्ञात हुआ कि ये केवल धार्मिक नियम है। 3 साल में घर की पूंजी भी खा चुका, अब विवश होकर आपकी शरण लेता हूं। मुझ हतभाग्य मनुष्य पर दया कीजिए और मेरा बेड़ा पार लगाइए। इनको उत्तर दीजिए कि जाली दस्तावेज बनवाइए और झूठे दावे चलवाकर उनकी डिग्री करा लीजिए। थोड़े ही दिनों में आपका क्लेश निवारण हो जाएगा। ये देखिए,
एक और सज्जन कहते हैं, लड़की सयानी हो गई है, जहां जाता हूं लोग दहेज की गठरी मांगते हैं, यहां पेट की रोटियों का भी ठिकाना नहीं, किसी तरह भलमनसी निभा रहा हूं, चारों ओर निंदा हो रही है, जो आज्ञा हो उसका पालन करूं। इन्हें लिखिए, कन्या का विवाह किसी बुढ़े खुर्राट सेठ से कर दीजिए, वो दहेज लेने की जगह कुछ उल्टे और दे जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे जिज्ञासुओं को किस ढंग से उत्तर देने की आवश्यकता है। उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत टीका टिप्पणी व्यर्थ होती है। अभी कुछ दिनों तक आपको ये काम कठिन जान पड़ेगा, पर आप चतुर मनुष्य हैं, शीघ्र ही आपको इस काम का अभ्यास हो जाएगा। तब आपको मालूम होगा कि इससे सहज और कोई काम नहीं है। आपके द्वारा सैकड़ों दारुण दुख भोगने वालों का कल्याण होगा और आजन्म वो आपका यश गाएंगे। मुझे यहां रहते 1 महीने से अधिक हो गया, पर अब तक मुझ पर यह रहस्य न खुला कि यह सुंदरी कौन है, मैं किसका सेवक हूं, इसके पास इतना अतुल धन, ऐसी ऐसी विलास की सामग्रियां कहां से आती हैं। जिधर देखता था ऐश्वर्य का ही आडंबर दिखाई देता था। मेरे आश्चर्य की सीमा न थी, मानो किसी तिलिस्म में आ फंसा हूं। इन जिज्ञासुओं का इस रमणी से क्या संबंध है, ये भेद भी न खुलता था। मुझे नित्य उससे साक्षात होता था, उसके सम्मुख जाते ही मैं चेत सा हो जाता था। उसके चितवनों में एक प्रबल आकर्षण था जो मेरे प्राणों को खींच लिया करता था। मैं वाक्य शून्य हो जाता, केवल छुपी हुई आंखों से उसे देखा करता था, पर मुझे उसकी मृदुल मुस्कान और रसमयी आलोचनाओं तथा मधुर काव्यमय भावों में प्रेमानंद की जगह एक प्रबल मानसिक शांति का अनुभव होता था। उसकी चितवनें केवल हृदय को वाणी के समान छेदती थी, उसके कटाक्ष चित्त को व्यस्त रखते थे। शिकारी अपने शिकार को खिलाने में जो आनंद पाता है, वही उस परम सुंदरी को मेरी प्रेमातुरता में प्राप्त होता था। वो एक सौंदर्य ज्वाला जलाने के सिवाय और क्या कर सकता है, जिस पर भी मैं पतंग की भांति उस ज्वाला पर अपने को समर्पण करना चाहता था। यही आकांक्षा होती थी कि उन पद कमलों पर सिर रखकर प्राण दे दूं। ये केवल एक उपासक की भक्ति थी, काम और वासना से शून्य। कभी कभी जब वो संध्या समय अपनी मोटर बोट पर बैठकर सागर की सैर करती, तो ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रमा आकाश में तैर रहा है। मुझे इस दृश्य में अनुपम सुख प्राप्त होता था। मुझे अब अपने नियत कार्यों का खूब अभ्यास हो गया था। मेरे पास प्रतिदिन पत्रों का एक पोथा पहुंच जाता था, मालूम नहीं कि डाक से आता था, लिफाफों पर कोई मुहर न होती थी। मुझे इन जिज्ञासुओं में बहुधा वो लोग मिलते थे जिनका मेरी दृष्टि में बड़ा आदर था। कितने ही ऐसे महात्मा थे जिनमें मुझे श्रद्धा थी, बड़े बड़े विद्वान, लेखक और अध्यापक, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान रईस, यहां तक कि कितने ही धर्म के आचार्य नित्य अपनी राम कहानी सुनाते थे। उनकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी। वो सब मुझे रंगे हुए सियार दिखाई देते थे। जिन लेखकों को अपनी भाषा का स्तंभ समझता था, उनसे घृणा होने लगी। वो केवल उचक्के थे जिनकी सारी कीर्ति चोरी, अनुवाद और कतर व्योत पर निर्भर थी। जिन धर्मों के आचार्यों को मैं पूजता था, वो स्वार्थ, तृष्णा और घोर नीचता के दलदल में फंसे हुए दिखाई देते थे। मुझे धीरे धीरे यह अनुभव हो रहा था कि संसार की उत्पत्ति से अब तक लाखों शताब्दियां बीत जाने पर भी मनुष्य वैसा ही क्रूर, वैसा ही वासनाओं का गुलाम बना हुआ है। बल्कि उस समय के लोग सरल प्रकृति के कारण इतने कुटिल, दुराग्रहों में इतने चालाक न होते थे। एक दिन संध्या समय उस रमणी ने मुझे बुलाया। मैं अपने घमंड में समझता था कि मेरे बांकेपन का कुछ न कुछ असर उस पर भी होता है। अपना सर्वोत्तम सूट पहना, बाल संवारे और विरक्त भाव से जाकर बैठ गया। यदि वो मुझे अपना शिकार बनाकर खेलती थी, तो मैं भी शिकार बनकर उसे खिलाना चाहता था। जो ही मैं पहुंचा, उस लावण्यमय ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, पर मुख चंद्र कुछ मलिन था। मैंने अधीर होकर पूछा, सरकार का जी तो अच्छा है? उसने निराश भाव से उत्तर दिया, जी हां, एक कठिन रोग में फंस गई हूं। अब तक किसी भांति अपने को संभाल सकी हूं, पर अब रोग असाध्य होता जाता है। उसकी औषधि एक निर्दयी मनुष्य के पास है। वो मुझे प्रतिदिन तड़पते देखता है, पर उसका पाषाण हृदय जरा भी नहीं पसीजता। मैं इशारा समझ गया। सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, सांस बड़े वेग से चलने लगी। मैं एक उन्मत्तता का अनुभव करने लगा। निर्भय होकर बोला, संभव है
जिसे आपने निर्दय समझ रखा हो, वो भी आपको ऐसा समझता हो और भय से मुख खोलने का साहस न कर सकता हो। सुंदरी ने कहा, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दोनों ओर की आग बुझे। प्रियतम, अब मैं अपनी हृदय की दहकती हुई विरह अग्नि को नहीं छिपा सकती। मेरा सर्वस्व आपकी भेंट है, मेरे पास वो खजाने हैं जो कभी खाली ना होंगे, मेरे पास वो साधन है जो आपकी कीर्ति को शिखर पर पहुंचा देंगे। समस्त संसार को आपके पैरों पर झुका सकती हूँ, बड़े बड़े सम्राट भी मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकते। मेरे पास वो मंत्र है जिससे मैं मनुष्य के मनोवेगों को क्षण मात्र में पलट सकती हूँ। आइए मेरे हृदय से लिपट कर इस दाह क्रांति को शांत कीजिए। रमणी के चेहरे पर जलती हुई आग की सी कांति थी। वो दोनों हाथ फैलाए कामोन्मत्त होकर मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थी, परंतु जिस प्रकार अग्नि से पारा दूर भागता है, उसी प्रकार मैं भी उसके सामने से एक कदम पीछे हट गया। उसकी इस प्रेमातुरता से मैं भयभीत हो गया, जैसे कोई निर्धन मनुष्य किसी के हाथों से सोने की ईंट लेते समय भयभीत हो जाए। मेरा चित्त एक अज्ञात शंका से कांप उठा। रमणी ने मेरी ओर अग्निमय नेत्रों से देखा, मानो किसी सिंहनी के मुंह से उसका आहार छिन जाए, और सरोष होकर बोली, ये भीरुता क्यों? मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं, इस महान आदर का पात्र नहीं। रमणी बोली, आप मुझसे घृणा करते हैं? ये आपका मेरे साथ अन्याय है। मैं इस योग्य भी तो नहीं कि आपके तलुओं को आंखों से लगाऊं। आप दीपक हैं, मैं पतंग हूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। रमणी नैराश्यपूर्ण क्रोध के साथ बैठ गई और बोली, वास्तव में आप बहुत निर्दयी हैं। मैं ऐसा ना समझती थी। आप में अभी तक अपनी शिक्षा के कुसंस्कार लिपटे हुए हैं। पुस्तकों और सदाचार की बीड़ी आपके पैरों से नहीं निकली। मैं शीघ्र ही अपने कमरे में चला आया और चित्त के स्थिर होने पर जब मैं इस घटना पर विचार करने लगा, तो मुझे मालूम हुआ कि मैं अग्निकुंड में गिरते गिरते बचा। कोई गुप्त शक्ति मेरी सहायक हो गई। ये गुप्त शक्ति क्या थी? मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था, उसके सामने झील के दूसरी तरफ एक छोटा सा झोपड़ा था। उसमें एक वृद्ध पुरुष रहा करते थे। उनकी कमर तो झुक गई थी, पर चेहरा तेजमय था। वो कभी कभी महल में आया करते थे। रमणी न जाने क्यों उनसे घृणा करती थी, मन में उनसे कुछ डरती थी, उन्हें देखते ही घबरा जाती, मानो किसी असमंजस में पड़ी हुई है। उसका मुख फीका पड़ जाता, जाकर अपना मुख छुपा लेती। मुझे उसकी ये दशा देखकर कौतूहल होता था। कई बार उसने मुझसे उनकी चर्चा की थी, परंतु अत्यंत अपमान के भाव से। वो मुझे उनसे दूर दूर रहने का उपदेश दिया करती, और यदि कभी उनसे बातें करते देख लेती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। कई कई दिनों तक मुझसे खुलकर न बोलती थी। उस रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई थी। उधेड़े बुन में पड़ा हुआ था। कभी जी चाहता, आओ आंख बंद करके प्रेम रसपान करें, संसार के पदार्थों का सुख भोगें, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जीवन में ऐसे दिव्य अवसर कहां मिलते हैं। फिर आप ही आप मन कुछ खींच जाता, घृणा उत्पन्न हो जाती थी। रात के 10 बजे होंगे कि हठात मेरे कमरे का द्वार आप ही खुल गया, और वही तेजस्वी पुरुष अंदर आए। यद्यपि मैं अपनी स्वामिनी के भय से उनसे बहुत कम मिलता था, परंतु उनके मुख पर ऐसी शांति थी और उनके भाव ऐसे पवित्र तथा कोमल थे कि हृदय में उनके सत्संग की उत्कंठा होती थी। मैंने उनका स्वागत किया और लाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने मेरी ओर दयापूर्ण भाव से देखकर कहा, मेरे आने से तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप जैसे महात्माओं का दर्शन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महात्मा जी निश्चिंत होकर बोले, अच्छा तो सुनो और सचेत हो जाओ। मैं तुम्हें यही चेतावनी देने के लिए आया हूं, तुम्हारे ऊपर एक घोर विपत्ति आने वाली है। तुम्हारे लिए इस समय इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं कि यहां से चले जाओ। मेरी बात न मानोगे तो जीवन पर्यंत कष्ट झेलोगे और इस माया जाल से कभी मुक्त ना हो सकोगे। मेरा झोंपड़ा तुम्हारे सामने था। मैं भी कभी कभी यहां आया करता था, परंतु तुमने मुझसे मिलने की आवश्यकता न समझी। यदि पहले ही दिन तुम मुझसे मिलते तो सहस्त्रों मनुष्यों का सर्वनाश करने के अपराध से बच जाते।
निसंदेह यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल था जिसने आज तुम्हारी रक्षा की। अगर ये पिशाचिनी एक बार तुमसे प्रेमालिंगन कर लेती तो फिर तुम उसी दम उसके अजायब खाने में भेज दिए जाते। वो जिस पर रीझती है उसकी वही गत बनाती है, यही इसका प्रेम है। चलो जरा इस अजायब खाने की सैर करो, तब तुम समझोगे कि आज तुम किस आफत से बचे। ये कहकर महात्मा जी ने दीवार में एक बटन दबाया, तुरंत एक दरवाजा निकल आया। ये नीचे उतरने की सीढ़ी थी, महात्मा उसमें घुसे और मुझे भी बुलाया। घोर अंधकार में कई कदम उतरने के बाद एक बड़ा कमरा नजर आया, उसमें एक दीपक टिमटिमा रहा था। वहां मैंने जो घोर विभत्स और हृदय विदारक दृश्य देखे उनका स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इटली के अमर कवि डेंटी ने नर्क का जो दृश्य दिखाया है उससे कहीं भयावह रोमांचकारी और नारकीय दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित था। सैकड़ों विचित्र देहधारी नाना प्रकार की अशुद्धताओं में लिपटे हुए भूमि पर पड़े कराह रहे थे। उनके शरीर मनुष्य के से थे लेकिन चेहरों का रूपांतर हो गया था। कोई कुत्ते से मिलता था, कोई गीदड़ से, कोई बन बिलाव से, कोई सांप से। एक स्थान पर मोटा स्थूल मनुष्य एक दुर्बल शक्तिहीन मनुष्य के गले में मुख लगाए उसका रक्त चूस रहा था। एक और दो गिद्ध की सूरत वाले मनुष्य एक सड़ी हुई लाश पर बैठ उसका मांस नोच रहे थे। एक जगह एक अजगर की सूरत का मनुष्य एक बालक को निगलना चाहता था पर बालक उसके गले में अटका हुआ था। दोनों ही जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे। एक जगह मैंने एक अत्यंत पैशाचिक घटना देखी। दो नागिन की सूरत वाली स्त्रियां एक भेड़िए की सूरत वाले मनुष्य के गले में लिपटी हुई उसे काट रही थी। वो मनुष्य घोर वेदना से चिल्ला रहा था। मुझसे अबौर न देखा गया, तुरंत वहां से भागा और गिरता पड़ता अपने कमरे में आकर दम लिया। महात्मा जी मेरे साथ चले आए। जब मेरा चित्त शांत हुआ तो उन्होंने कहा, इतनी जल्दी घबरा गए, अभी तो इस रहस्य का एक भाग भी नहीं देखा। ये तुम्हारी स्वामिनी के विहार का स्थान है और यही उनके पालतू जीव हैं। इन जीवों के पिशाचाभिनय देखने में उनका विशेष मनोरंजन होता है। ये सभी मनुष्य किसी समय तुम्हारे ही समान प्रेम और प्रमोद के पात्र थे, पर उनकी ये दुर्गति हो रही है। अब तुम्हें यही सलाह देता हूं कि दम यहां से भागो, नहीं तो रमणी के दूसरे वार से कदापि न बचोगे। ये कहकर वो महात्मा अदृश्य हो गए। मैंने भी अपनी गठरी बांधी और अर्धरात्रि के सन्नाटे में चोरों की भांति कमरे से बाहर निकला। शीतल आनंदमय समीर चल रही थी। सामने के सागर में तारे छिटक रहे थे, मेहंदी की सुगंधि उड़ रही थी। मैं चलने को चला पर संसार सुख भोग का ऐसा सुअवसर छोड़ते हुए दुख होता था। इतना देखने और महात्मा के उपदेश सुनने पर भी चित्त उस रमणी की ओर खींचता था। मैं कई बार चला, कई बार लौटा, पर अंत में आत्मा ने इंद्रियों पर विजय पाई। मैंने सीधा मार्ग छोड़ दिया और झील के किनारे किनारे गिरता पड़ता, कीचड़ में फंसता सड़क तक आ पहुंचा। यहां आकर मुझे एक विचित्र उल्लास हुआ, मानो कोई चिड़िया बाज के पंजों से छूट आई हो।

यद्यपि मैं एक मास के बाद लौटा था, पर अब जो देखा तो अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था। कमरे में जरा भी गर्द या धूल न थी। मैंने लोगों से इस घटना की चर्चा की तो लोग खूब हंसे और मित्रगण तो मुझे अभी तक मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कहकर बुलाया करते हैं। सभी कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकला। महीना भर गायब रहने की तो बात ही क्या। इसलिए मुझे भी विवश होकर यही कहना पड़ता है कि शायद मैंने कोई स्वप्न देखा हो। कुछ भी हो, परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मैं उस पाप कुंड से बचकर निकल आया। चाहे स्वप्न ही हो, पर मैं उसे अपने जीवन का एक वास्तविक अनुभव समझता हूं, क्योंकि उसने सदैव के लिए मेरी आंखें खोल दी।

तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी, जिसमें आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ज्वालामुखी। फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की। तो आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर

मेरी तालीम शाहजहाँपुर घराने से प्रमुखता हुई है और कुछ चीज़ें हर तंत्रकार को बीनकार घराने से जब तक कुछ ना मिले तब तक उसकी तालीम पूरी नहीं समझी जाती है। तो मेरे गुरु एवं दादा गुरु दोनों ने शाहजहाँपुर परंपरा से सीखने के बाद सेनिया ग्वालियर सेनिया परंपरा से भी तालीम ली है। तो कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत ही संक्षेप में।

0: और श्रोताओं, डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार के सरोद वादन को सुनने के बाद अब बारी है पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की।
1: विलंबित एकताल राग बिहाग आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित श्रीनिवास जोशी का गायन। आज का कार्यक्रम भारत भारती यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत भारती में नीना श्रीवास्तव का कजरी गायन। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 173 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रावरुणी, देवता हैं इंद्र, और छंद है त्रिष्टुप, विराट स्थाना अथवा विषम पदा।
3: समत्सुत्वाशूर सतामुराणम प्रपथिन्तमं परितं सयध्यै सजोषस इन्द्रं मदे क्षोणीः सूरि चिन्द्ये अनुमदन्ति वाजैः। जो उत्साही वीरगण आनंदित स्थिति में अन्नों के द्वारा ज्ञान संपन्न इंद्रदेव को मरुतों के साथ प्रसन्न करते हैं, हे वीर इंद्रदेव, वे सर्वोत्तम श्रेष्ठ मार्गदर्शक मानकर आपको ही युद्ध भूमि में भी अग्रणी स्थान प्रदान करते हैं। एवा हि तेषं सवना समुद्र आपो यत्त आसु मदन्ति देवीः विश्वाते अनु जोष्या भूद्गैः सूरींश्चिद्यदि धिषावेशी जनान। जब जलों को समुद्र तथा समस्त भूक्षेत्रों में बरसाने के लिए इंद्रदेव की स्तुति की जाती है, तब जल वृष्टि की कामना से किए जा रहे यज्ञ आनंदप्रद होते हैं। जब ज्ञानी मनुष्य भावना पूर्वक इंद्रदेव की प्रार्थना करते हैं, तब हर्षित इंद्रदेव उन्हें अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। असाम यथा सुशखाय एन स्वभिष्टयो नराम न संशयहि असद्यथा न इंद्रो वंदनेष्ठास्तुरो न कर्म नयमान उक्था। हे स्वामी इंद्रदेव, आप हमारे साथ वही व्यवहार करें जिससे हमारी मित्रता आपके साथ रहे और हमारी स्तोत्रवाणियां आपसे अभीष्ट साधनों की पूर्ति भी करा सकें। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर शीघ्र ही हमें कर्तव्यों का निर्वाह करने की शक्ति प्रदान करें। विश्वर्धसो नराम न संशय रस्माकास दिन्द्रो वज्रहस्तः मित्रायुवो न पूर्पतिम सुशिष्टौ मध्यायुव उप शिक्षन्ति यज्ञैः। याज्ञिकों के समान ही स्तोता लोग भी प्रशंसक वाणियों के द्वारा प्रतिस्पर्धा भावना से इंद्रदेव की स्तुति करते हैं, ताकि वज्रधारी इंद्रदेव की मित्रता हमें प्राप्त हो। जैसे मध्यस्थ लोग शिष्टाचारवश मित्रता की कामना से कुछ उपहार देते हैं, वैसे ही राष्ट्र रक्षक इंद्रदेव को यज्ञों के द्वारा दान स्वरूप हविष्यान्न समर्पित करते हैं। यज्ञों हिष्मेन्द्रम कश्चिद्रिन धंजुहुराणश्चिन मनसा परियन तीर्थे नाच्छा तात्रिषाणमोको दीर्घो न सिद्ध्रमा कृणोत्यध्वा। प्रत्येक यज्ञीय कर्म इंद्रदेव को संवर्धित करते हैं। दुर्भावजन्य कुटिलता से किए गए यज्ञ से इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होते हैं। जिस प्रकार तीर्थ यात्रा में प्यासे को समीप का जल ही तुष्टि देता है, दूर दिखने वाला जल तृप्त नहीं करता, उसी प्रकार श्रेष्ठ यज्ञ ही इंद्रदेव को प्रसन्नता प्रदान करता है। जैसे लंबा पथ पीड़ा पहुंचाता है, वैसे ही कुटिलता पूर्ण यज्ञ कुटिल फल प्रदान करता है। मोषूण इंद्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हिष्मा ते सुष्मिन् नवयाः महिश्चिद्यस्य मीडहुषे यव्या हविष्मतो मरुतो वंदते गीहि। हे इंद्रदेव, आप मरुतों के साथ युद्ध में हमारा भी साथ मत छोड़ना। हे बलशाली, आपके लिए यज्ञ भाग प्रस्तुत है। हमारी सुख देने वाली फलित होने वाली स्तुतियां अन्न और जल देने वाले मरुतों की भी वंदना करती हैं। एष स्तोम इंद्र तुभ्यमस्मे एतेन गातुम हरिवो विदो नह आनो ववृत्याह सुविताय देव विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। हे अश्वों से संपन्न देवस्वरूप इंद्रदेव, हमारी ये स्तुतियां आपके निमित्त हैं। इनसे हमारे यज्ञ के उद्देश्य को समझें। हमें

0: कल्याणकारी।
1: उक्त 173 से वाचन प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। भगवान की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है।

अरे जितना घट उतना मतान, बहु बाणी बहु बेख। अरे सब घट व्यापक साइया, अगम अपार अलेख। तो जो वह एक न जान।

ईश्वर की पवित्र मंगल मिलने से श्रद्धा दृढ़ होती है। ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती।

जेल में उन्हें घोर यातनाएं दी गईं। जेल पहुंचकर उनके मन में यही चिंता थी कि अब देश को आजादी कैसे मिलेगी, जेल में रहकर स्वाधीनता के लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। अंडमान में रहते हुए उन्हें जो सबसे बड़ा दुख था वो था अपनी मातृभूमि से दूर हो जाने का दुख। जेल में उन्हें प्रलोभन भी दिया गया। अपनी आत्मकथा में वो लिखती हैं, सूरज निकलते ही सुबह जेलर ने कड़क आवाज में मुझसे कहा, अगर तुम बता दो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं, तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। वो तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, सारी दुनिया जानती है, मैंने जवाब दिया। जेलर ने चीखते हुए कहा, झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो कि वो हवाई दुर्घटना में मर गए, नेताजी जिंदा हैं। हां वो जिंदा हैं, मैंने कहा। तो कहां हैं, जवाब दो, जेलर चीखा। मेरे दिल में जिंदा हैं वो। जैसे ही मैंने ये कहा, जेलर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे। वो बताती हैं कि जेलर के इशारे पर लोहार ने असहनीय पीड़ा देते हुए लोहे के जंबूर से उनके स्तनों को काटने की कोशिश की। अपमान और दर्द से भरी ये घटना असहनीय थी। यातनाओं के ऐसे अनेक दौर जेल में जारी रहे। छोटी सी कोठरी में लोहे की जंजीरों से बांधकर वो रखी गई थी। जब देश आजाद हुआ तब नीरा आर्य भी रिहा कर दी गईं। आजादी के बाद उन्होंने कोई सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। उनके भाई बसंत कुमार भी स्वाधीनता संग्राम में शामिल रहे और आजादी के बाद वो सन्यासी बन गए। नीरा आर्य ने अपने जीवन के अनुभवों को दो किताबों में लिखा, एक उनकी आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष और दूसरी किताब है अंडमान की अनोखी प्रथाएं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने फूल बेचकर गुजारा किया। वो हैदराबाद में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थीं। 26 जुलाई सन 1998 को निर्धन और असहाय स्थिति में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद। हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बातों की बात की। आप सोच रहे होंगे ना, ये कौन सी बात हुई? लेकिन यही बात है बच्चों कि हम बात कैसे करते हैं, बात करने का हमारा तरीका क्या है, बात करते करते कहीं हम ये तो नहीं भूल जाते कि हम इतना कैजुअल हो गए हैं कि किसी से कुछ भी बोले दे रहे हैं? क्या हम अपनी भाषा में बुरे शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या हमने अपनी बोली में पूरी मर्यादा रखी हुई है? या हम कुछ भी कहे जा रहे हैं? तो फिर अब हम आपको आज इसी बारे में बताने वाले हैं कि भाषा की मर्यादा क्या होती है ना? एक बहुत अच्छा दोहा है जो मुझे बड़ा पसंद भी है और वो दोहा है, रहमन जिहवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जूत खात कपाल। है ना, कितनी बड़ी बात है। रहीम जी कहते हैं कि जीभ बड़ी पागल है, या ये कह लीजिए कि बावली है, जो बिना सोचे समझे स्वर्ग और पाताल तक की उल्टी सीधी बातें कह जाती है। और खास बात ये है कि ये जीभ तो बिना विचारे बोलकर तुरंत मुंह के अंदर छुपकर बैठ जाती है, लेकिन इसके द्वारा कहे गए जो कड़वे या गलत शब्द हैं उनके कारण मार किसको पड़ती है? हमारे सिर को, है ना? मतलब कहे कोई और भोगे कोई, कह रही है जीभ, भोग रहा है सिर, तो फिर तो गलत बात हो गई ना बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि ये जीभ जो है इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करिए। एक और बात है, जो आपके शब्दों के बाण होते हैं ना, वो ज्यादा तेजी से घायल करते हैं किसी और चीज से, तो इसलिए हमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक और बात कहते हैं, वो ये कि कही गई बात कभी वापस नहीं लौटती। मैं आपको इतनी सारी छोटी छोटी कहावतें, इतनी सारी बातें आज आपको बता दूंगी ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए कि हमें जब भी बात करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये बात करने के लिए मुझे कहाँ से दिमाग में आया, तो कहानी बड़ी सिंपल है। मैं आप जैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं खेल रहे होते हैं, कभी मंदिर के मैदान में, कभी कॉलोनी के पार्क में, कभी किसी के मोहल्ले में, अगर मैं जाती हूँ किसी से मिलने तो वहाँ जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत मिलती हूँ ये आपको पता है, तो बस जब मुझे ऐसे बच्चे दिख जाते हैं और वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे बाल सभा में आप लोगों से ये बात करनी है। तो हुआ ये कि मैं अपनी कॉलोनी के पार्क में बैठी हुई थी, दो बच्चे खेल रहे थे, हालांकि टीम उनकी बहुत बड़ी थी, 10-12 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दो बच्चों को मैंने देखा जो खेलते खेलते किसी बात पे झगड़ पड़े। तो ठीक है, बच्चों में झगड़ा होता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो झगड़े बहुत जल्दी से सुलझ भी जाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े भोले भाले भी होते हैं ना। आप सब आज लड़े कल दोस्ती, तो ये चीज़ बहुत अच्छी भी है। अब लेकिन क्या हुआ, उसमें से एक

0: करती हैं कि किसी
1: जानता है और उसी प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग।
2: वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर,
1: विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। श्रोताओं, तृतीय सर्ग के भाग दो में मानो दिनकर जी ने कहीं अपने ही जीवन के संघर्षों से उत्पन्न भावों को पांडवों की कहानी में उकेर दिया हो। जीवन जीना मानो पत्थर पर फूल उगाने की कोई कला जैसा होता है। जो पुरुष कर्मशील है उसे विपत्तियों से भयभीत नहीं होना चाहिए, और जो धीर है वह सुखों में डूबकर अपने लक्ष्य को नहीं भूलता।
2: श्रोताओं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, इन पंक्तियों में केवल पांडवों के लिए संदेश नहीं है, बल्कि भारत की युवा शक्ति के लिए एक कालजयी पुकार है। मानो कवि सीधे युवा हृदय से संवाद कर रहा हो और कह रहा हो, हे नवयुवक, तू कठिनाइयों से भागने के लिए नहीं जन्मा, तू उन्हें परास्त करने के लिए जन्मा है। संघर्ष तेरी बाधा नहीं, तेरी निर्माण भूमि है। विपत्ति तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। यदि तू आराम में डूबा रहेगा तो सो जाएगा, पर यदि तू संघर्ष को अपनाएगा तो जाग जाएगा। तेरी नसों में केवल रक्त नहीं, ऊर्जा, स्वप्न और परिवर्तन की शक्ति बह रही है। समय उसी का साथ देता है जो साहस करता है। इसलिए उठ, अपने भीतर की अग्नि को पहचान, विपत्तियों पर छा जा और अपने पुरुषार्थ से अपना ही नहीं युग का भाग्य लिख दे।
1: श्रोताओं, हमें अब उस रथ की आवाज सुनाई दे रही है जिसके रथ से संसार के मनोरथ जुड़ते हैं, जिसके रथ के पहिए पहिए न होकर हम सभी के काल चक्र की ओर घूमते हुए हमारे जीवन और हमारी मृत्यु का विधान तय करते हैं। आइए उसी रथ के साथ तृतीय सर्ग के भाग तीन में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं इस तृतीय सर्ग का भाग तीन। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कृष्ण कहते हैं,
2: दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे।
1: दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
2: जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरू पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र, शत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र।
1: श्रोताओं, अभी आपने तृतीय सर्ग का ये भाग सुना। कथा महाभारत से ली गई है, पर दृष्टि दिनकर जी की है। यही तो विशेषता है रश्मि रथी की, कि ये केवल अतीत का आख्या नहीं, यह वर्तमान का मार्गदर्शन है। जीवन में शांति मार्ग सदैव श्रेष्ठ होता है। कृष्ण पहले दूत बनकर आते हैं, शस्त्र लेकर नहीं। ये हमें सिखाता है कि संवाद युद्ध से बड़ा होता है। अब समस्या ये है कि हमारा अहंकार उन्हें पहचान नहीं पाता। जब तक हम अपने भीतर के दुर्योधन को नहीं पहचानेंगे, तब तक विराट सत्य सामने होते हुए भी हम अंधे ही रहेंगे। दिनकर जी की कलम हमें झकझोरती है। यह काव्य केवल सुनने के लिए नहीं, आत्ममंथन के लिए है। आइए अब प्रवेश करें उस क्षण में जहां मनुष्य ईश्वर को बांधने चलता है और उत्तर में ईश्वर ब्रह्मांड का पट खोल देते हैं। सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 4 का काव्य पाठ। इसे श्री कृष्ण की चेतावनी के नाम से भी सुनते और जानते हैं।
2: शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट विष्णु जलपति धनेश, शतकोट रुद्र शतकोट काल, शतकोट दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, पर मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
1: थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
2: श्रोताओं, दिनकर जी की अमर कृति रश्मि रथी हमें केवल महाभारत की कथा नहीं सुनाती, वो हमारे भीतर के कुरुक्षेत्र को उजागर करती है, अतः आइए इस प्रसंग से ये सीख लेकर आगे बढ़ें कि शांति का मार्ग ही श्रेष्ठ है, विनम्रता ही बल है और आत्मचिंतन ही वो दीप है जो हमें विनाश से बचा सकता है।
1: आइए सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 5 का काव्य पाठ। भगवान सभा को छोड़ चले, कर केरण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर, रथ चला परस पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा,
2: हाय हम शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वी तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं और क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हां एक बात यदि तू मानी तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, शरचाप उठाए 8 प्रहार, पांडव से लड़ने हो तत्पर, मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चमर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, हा हा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, हसली स्वरूप में जानेंगे, कोई मणि को जब पाएगी कुंती फूली ना समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे, कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुटमान सिंहासन ले ले, बस बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके।
1: श्रोताओं अभी आपने कृष्ण की वाणी सुनी, वह वाणी जो केवल शब्द नहीं करुणा का समुद्र है, केवल तर्क नहीं समय की अंतिम पुकार है, वे कर्ण को समझा रहे हैं, पर वस्तुतः मनुष्य के भीतर बैठे उस द्वंद को संबोधित कर रहे हैं, जहां कर्तव्य और कृतज्ञता, जन्म और पालन, सत्य और संबंध आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कृष्ण जैसे कोई दीपक लेकर अंधेरी सुरंग में उतर आए हों, वे कर्ण को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा,
2: हे कृष्ण, बड़ी ये माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं, ग्लानी व्यथा मैं ध्यान जन्म का धरता हूं। उन मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण। जिस माँ ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, मां का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वो तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी, पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है, क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं, कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में, क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय, ये अभिनंदन नूतन क्या है, केशव ये परिवर्तन क्या है, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था, उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको, हे कृष्ण जरा ये भी सुनिए,
0: सच है कि झूठ मन में गुनिए, दोनों में मैं था पड़ा हुआ। किसका स्नेह पा पड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निरपता दे महिमा पान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, राधा ने माँ का कर्म किया।
2: श्रोताओं, कर्ण के शब्दों में अभी आपने केवल आक्रोश को नहीं सुना, एक ऐसे पुत्र का रिश्ता हुआ हृदय सुना है, जिसे जन्म तो मिला पर अपनापन नहीं मिला। यह संवाद तीर की तरह बाहर नहीं आता, भीतर धसता चला जाता है। कर्ण आज प्रश्न कर रहा है, पर यह प्रश्न केवल कुंती से नहीं है, यह उस समाज से भी है जो समय देखकर रिश्तों की चादर ओढ़ता और उतारता है। सच ही कहा गया है श्रोताओं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जिस बालक ने जन्म से ही तिरस्कार की धूप सही हो, वो अचानक मिले स्नेह पर सहज कैसे विश्वास कर ले।
1: और देखिए ना, कर्ण की वेदना केवल मातृत्व के अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है, उसके भीतर वर्षों का अपमान अंगार बनकर धधक रहा है। वह पूछ रहा है, जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराता था, तब किसने मेरा हाथ थामा था, कौन मेरे आंसुओं पर मरहम रखता था। यही कारण है कि उसका मन आज जन्म से अधिक पालन को सत्य मानता है। श्रोताओं, लोक में कहा जाता है कि जिसने दुख की धूप में साथ दिया वही अपना कहलाया। कर्ण के लिए राधा केवल पालक माता नहीं, उसकी आत्मा का आश्रय है।
2: दोस्तों, दिनकर जी यहां केवल कर्ण की कथा नहीं लिखते, वे मनुष्य के भीतर के उस खालीपन को शब्द देते हैं, जहां अपनापन और उपेक्षा आमने सामने खड़े होते हैं। कृष्ण उसे उसके जन्म का सत्य दिखा रहे हैं, पर कर्ण जीवन का सत्य सामने रख रहा है। यही इस प्रसंग की महत्ता है। यहां धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, संबंधों की कसौटी पर भी परखा जा रहा है।
1: श्रोताओं, अभी कर्ण का मन पूरी तरह खुला नहीं है, उसके हृदय में वर्षों से दबा हुआ लावा अभी और फूटना बाकी है। उसकी वाणी में अभी भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो समय के सीने पर चोट करने वाले हैं। अगले भाग में कर्ण अपने जीवन, अपनी मित्रता, अपने अपमान और अपने धर्म का ऐसा पक्ष रखेगा जहां करुणा और प्रतिज्ञा एक साथ दिखाई देंगी। अगले अंक में सुनेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के अंतर मन का वह ज्वालामुखी जो अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से फटने को है। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर यह विदा केवल एक विराम है, इस काव्य यात्रा का अंत नहीं। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का, वाचन स्वर मैं भगवती सक्सेना,
2: मैं संदीप शर्मा
3: और मैं दीपक नेमा।
1: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।